किसी को नहीं सुहाती, और अपनी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय और जलता है। ताते उपजत है उर दाहू, और ऐसे भयंकर दुख की स्थिति में भजन होता है? सुख में प्रभु भूल जाते हैं, दुख में भजन होता नहीं।

अभी संभल जाइए भाई, मत आने दीजिए जीवन में वो कठिन समय। पकड़िए प्रभु के चरण। संसार को अपना समझने की भूल हमसे आज तक हुई है, और ये जितना दुख जीवन में है ये उसी भूल का परिणाम है। और मैं साथ साथ कहता चलूं, लड़ झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराए से कोई आशा नहीं, पराए से कोई आशा नहीं। और संतों का सिद्धांत है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कई बार आपसे मैंने कहा, भाई संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, और सुख की आशा किससे होगी, जिसे आप अपना समझेंगे। एक बार अपना प्रभु को समझ कर देखिए, सुख की आशा पूर्ण हो जाएगी, सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए व्यास जी ने समझाया था, व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख।

बलहीन हुआ, बुद्धि कार्य नहीं करती, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूं, झूठे कुटुंबी के रंग भीनो और सांचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरणों में कभी चित्त नहीं दिया और बस इसी झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है, कहां लग कहूं मूर्खता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहां तक कहूं। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, आवरण पड़ गया मेरी बुद्धि पर और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नयन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत, बुद्धि घटी तन गति लटी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी ना करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं, जब जब शरीर अशक्त है तो विषय में रुचि कैसे होगी। बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए। रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय से हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल है। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है, वृद्धावस्था आने पर तृष्णा और बलवती होती है और अधिक दुखदायी स्थिति क्या होती है कि युवावस्था में तन में और मन में बल और शक्ति रहती है, इंद्रिय निग्रह करना सरल है, लेकिन वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती और कभी कभी कभी कभी व्यक्ति इस बढ़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का और मैं कहूंगा स्वयं को सजाने का जो श्रेष्ठ काल है वो यौवन का काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध श्रृंगार करे तो भी संसार उपहास करता है। श्रृंगार कब अच्छा लगता है, जब युवावस्था होती है। ऐसे ही भक्ति क्या है, ये उर अंतर का श्रृंगार है, भक्ति जीवात्मा का श्रृंगार है। तो जब तन पर यौवन हो उसी काल में भजन करिए, उसी काल में हरि की भक्ति करिए। मैं तो कई बार कहता ही हूं ना आपसे कि भक्ति जीव को सताती नहीं है, भक्ति जीव को सजाती है, वो श्रृंगार कर देती है जीव का, अनेक अनेक सद्गुणों से वो सुसज्जित अलंकृत कर देती है जीव को, प्रभु के मिलन के योग्य बना देती है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, सही निर्णय तभी वस्तुतः सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है, भजन के मार्ग पर देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज करना है, अभी करना है, मन लगे तो भी करना है और मन लगे ना लगे तो भी करना है, भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से तन मन की गति रति लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत

और बहुत लोगों से मैंने सुना है भाई, वो कहते हैं महाराज मरने से डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। टूटी खाट न छाणी भावे और सुत के सुत नातीन खिलावे, लेकिन ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं, अंत संसार का विषय ऐसा है वो स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। विषय के सेवन से कभी विषय से अरुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात मैं समेट कर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ लें या कभी समझिएगा। आप सोचें कि आज सेवन कर ले कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है। विषय का त्याग ही विषय से दूर लेकर जाता है। और मैं तो कभी कभी एकांत में बैठता हूं तो विचार करता हूं, दो स्थितियां आती हैं, मन जानता है कि यह अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार उस ओर जाता है, बलात् कोई उस ओर ले जाता है मन को। ना करो तो भी मन दुख पाता है, करो तो भी मन दुख पाता है, पर विचार करना चाहिए, अगर ना करके भी दुख है और करके भी दुख है तो फिर ना करके ही दुख पा लेना चाहिए। कम से कम उस ना करने की अवस्था में आप तो अपने साथ होंगे, आपका आत्म बल तो उस समय बना रहेगा। दुख तो है और संसार में सुख की आशा लगाना ही बड़ी मूर्खता है, तो दुख ही दुख है भाई। मैं तो इसलिए आपको बीच बीच में कह देता हूँ, स्मरण करा देता हूँ कि साधन का पथ है भाई बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन ढिंग डरिबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन संसार का विषय का सेवन करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रिया आ गई, कब बाल सफेद हो गए। रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा। नैन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, युवावस्था में ही आ गए थे, बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया। वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, तो हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव केसन अस्करी, जो अरिहू ना कराही

भूले कोई भूले, तुम जिन भूलो मालाधारी। व्यास जी ने कहा, मुंड मुंडाए कि लाज निभाइए, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है, माथे पर ये हरि मंदिर है, गले में तुलसी की कंठी है, हाथ में जप की माला है, तुम जिन भूलो मालाधारी। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।

यह रुचय मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। और उसमें दुर्दशा में दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन, पर फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन को, छोड़ दीजिए, देखिए मन कहाँ जाता है, सहज में मन किस ओर जाता है, सहज में मन संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूं, देख लिया संसार का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने मेरी मति फेरी है, कैसी मेरी मति भ्रमित हुई है कि यह रुचय मुख नाम ना आवे, तो भी संसार रुचता है पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे, सुनता हूं शास्त्रों पुराणों की कथाएं, सुनता हूं कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सबकी कहानी है, ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। भजन आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, देखिए उनका स्वभाव कैसा है। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर, श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजहिं जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई संसार का भजन करे तो ते नर पशु बिन पूछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेकहीन पशुवत है पर एक प्रकार से पशु से भी गया बीता है। मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है, क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभावना है। तो मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है तो वो

रसना फिर अंत समय ये हिली ना हिली। अरे नेक सी पीड़ा कहीं तन में हो जाए सब भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है। नेक सत्तन में कष्ट हो, मन में कष्ट हो, इसलिए आज ये सुख का जो समय है इसका लाभ लीजिए। ये सुख सदा के लिए आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए। भजन करिए और कब करिए? आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल, ये विष के फल मैंने खाए हैं और

और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से, वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तन जीर्ण होता है, संसार तो ये सिखाता है ना भाई, ये कोई अवस्था है भजन करने की, जब समय आएगा तब तो भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है, संसार तो कहता है मन लगाकर काम करो, संसार की शिक्षा तो यही है भाई मन लगाकर काम करो। हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करो समय पर करो मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई संत सिखाते हैं मन लगा के हरि का नाम लो, संसार का काम बुद्धि लगाकर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो, उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात को सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका, बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन है सचु पाए। राज महाराज जी ने आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं, और मैं चाहूंगा ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।

और आपके हाथ में जो वाणी है उसके बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर चार पंक्तियां लिखी है श्री ध्रुवदास जी की हैं, प्रार्थना की है युगल चरणों में। सत्र का विश्राम इन्हीं पंक्तियों से किया करेंगे। ऐसी करो नवलाल रंगीले जो

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: शंभु शंभु शंभु शिवा महादेवा
1: शिवा महादेवा।
0: और रेडियो महारानी भी सुनते रहिए क्योंकि उसमें काफी हटके चीजें आती है, इसीलिए उनका टैगलाइन भी कुछ हटके है।

0: powerful leadership tool you have is your own personal example. You are listening to the thoughts of Mr. Sonu Sharma, who is a life coach and motivational speaker. Keep listening, Radio Maharani, Kutch Hatke.
1: हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके, या अपना कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये सही लग रहा है, लोगों ने मना भी किया, फिर भी हमने किया और उसमें हम फेल हो गए। अब वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो दुनिया हमको याद दिला रही है आकर के, है ना। जैसे ही हम कुछ और करने के बारे में सोचते हैं तो लोग हमको वाला फेलियर याद दिला देते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था, क्या हुआ। तो बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। चलो बाहर से जो अटैक हो रहा है उसको तो आप फिर भी हैंडल कर सकते हो, उनसे लड़ लो झगड़ लो, तो वो भी कहेंगे यार क्या लड़ाई झगड़ा करना है, छोड़ो बात मत करो इनसे इसके बारे में। बट अंदर जो अटैक हो रहा है उसको कैसे हैंडल करें, राइट। सारा खेल यही है कि हमारे अंदर हर वक्त कई तरह के अटैक्स चलते रहते हैं, उससे कैसे बचोगे। आप चाहे पहाड़ पे चले जाओ, चाहे मूवी देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ देर के लिए आप उसको भूल सकते हो, ठीक है ना। दारू पी ली कुछ देर के लिए, भूल गए, फिर याद आ जाएगा। जैसे होश में आओगे फिर से याद आ जाएगा, सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाएंगी। तो खुद से कैसे बचे, समझ रहे हो। यहां पे जो लिखा हुआ ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसका मोटिव यही है कि मेरे सारे सेशंस का एसेंस क्या है। ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है, अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर, उसको कैसे फेस करें। क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है, समझ गए ना। और एक्चुअल में बाहर कोई अटैक होता नहीं है, होता अंदर ही है। बाहर अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ में है कि उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो, अगर इस बात को हम समझ पाए तो। आप चाहो तो अपने मन में बोल दो अरे ये तो है ही ऐसा, समझ गए, असर होना बंद। आपको नहीं इसने ऐसा क्यों बोला तो असर ज्यादा होगा। जैसे कोई अगर कोई आपको पता है कि कोई पागल है, वो आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो क्या उसके उसके बारे में आप बैठ करके सोचोगे 10 दिन तक कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो किसी का बेसिक नेचर है उल्टे सीधे काम करना, या उल्टा सीधा आपको बोलना, या आपको तंग करना। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है उसका बेसिक नेचर है, कोई बात नहीं, तो जैसे आप अंदर से बोल देते ना कोई बात नहीं, क्या उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, बट ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जो आंसर है वो ये, डू यू पीपल वांट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूं डीपली, कि हमसे कोई गलती हो गई, अब वो गलतियां क्या हो सकती है। गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल गलतियां फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहां की कहां पहुंच जाती है, है ना। अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही होता है ना कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं, मैं कितनी बेवकूफ हूं, ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में। हाँ, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूं चीजों को। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट। जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे तभी तो आपको समझदार कहेंगे। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट। इसको ध्यान से समझ लो। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको पहले तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं करती थी इस रिलेशनशिप में, मे बी कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया। तो इससे आपने क्या सीखा कि अब जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में, स्पेशली बड़े डिसीजंस तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कौन सा कपड़ा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 रुपए महंगा भी खरीद लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या है वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं। 10 दुकानों में जाएंगे, ट्राई करेंगे, 100 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे। 100 रुपए भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 20-20 रुपए के पीछे कितनी किचकिच करेंगे। और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो वो कैसे लेते हैं हम? बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है।

0: वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं, करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना। स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है इसको, अरेंज मैरिज बोलते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, इट इज अ वेरी वेरी वेरी क्या कहूँ, वेरी नो कमेंट्स। तो जो भी है, अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो मुझे गड़बड़ लगती है वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया। अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तू हाँ कर दे, और उसने हाँ कर दी, ठीक है बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो है उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है। आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ, एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, यहाँ कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का, इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है। गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी तो दे सकते हो, ये पति को किसको कबाड़ी दे दोगे। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो इसको पकड़ के रखो, दिस इज कॉल्ड विजडम। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ऐसा। मैं क्या कहता, अरे करो करो करो, और पीने वान करा लगा दो बियर लगा, अरे ये करो बाइक ना लिटा के मोड़ेंगे, मैंने सारे काम करे ऐसा नहीं करे, लिटाए और खुद भी लेट गया और पीछे वाला कहता कहता यार मैंने क्या गलती की, मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है, आप समझ रहे हो। तो ये सब काम मैंने करे हैं, तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, मैं कह रहा हूं समझ लो कि करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, कर भी दिया तो उसे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो, अरे मैंने खुद बहुत गलतियां करी है तो मैं आपको कैसे बोलूंगी गलतियां मत करो, गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया, समझ गए, मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर आपने टॉप कर दिया कहीं पर, तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मिल रहा है आपको जवाब, मिल रहा है। एक बार मैं इसको थोड़ा और डीपली टच करता हूं, तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इन टू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बार, अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है बात करते करते, पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, समझ गए, अनजाने में करी है तो वो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो, ये गलती है। मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना, तो आप फेल हो गए इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है। अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है। कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके, हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना। मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं, अपने आप को ये बोलो। आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाए। अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी जिसको आप बड़ी समझ रहे हो। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी। तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है लाइफ में, तो क्या ये छोटी क्वालिटी है? डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? मतलब पेशेंस इज सो बिग यार, पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही डिसीजंस ले सकते हो, सही चॉइसेस ले सकते हो, अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ठीक है ना।
1: माय क्वेश्चन इज दैट how should one maintain mental stability and balance of mind in situations of life and death?
0: बहुत भारी सवाल है वैसे तो, बट ये सवाल क्योंकि हर एक को फेस तो कभी ना कभी करना ही है। जो लोग आपके आसपास में जिनको बहुत प्यार करते हैं उन्होंने मरना ही है। अब मैं देखो कितने आराम से बोल जाता हूँ, बिकॉज मेरे लिए मैटर नहीं करती। अब ऐसा क्या हो कि आपके लिए भी मैटर ना करे? समझ गए ना, वो इंसान जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है, वो मर सकता है ना आज, हम खुद भी मर सकते हैं। तो कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो? ऊपर ऊपर से तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता ऊपर से नहीं होगा, अंदर से नहीं। ऊपर और अंदर का मतलब हमको समझ आ रहा है? देखो इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, व्हाट इज आउटर व्हाट इज इनर। आप एक मूवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, रो रहे हो, तो ऐसा लग रहा है आपके ऊपर भी असर हो रहा है और अंदर भी हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी है। तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, दुनिया जो आपके बारे में कहती है उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, हेल्थ से रिलेटेड आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में उसका भी आपके ऊपर असर ना हो। ये सब चीजें ऐसी हैं जो होनी होनी है आप लोगों के साथ। अभी हो सकता है समझ नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी धीरे धीरे समझ आएगी ये सारी बातें। उसके अलावा आपके आस पास में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तब भी आपके ऊपर असर ना हो। और भगवान ना करे अगर वो इस दुनिया से चले गए, उसका भी आपके ऊपर असर ना हो। क्या ये हो सकता है? पहले तो सवाल ये है, क्या लगता है आपको, हो सकता है नहीं हो सकता है? सच बोलो, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए बोलना है। नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। क्यों कह रहे हो कि नहीं हो सकता है? देखो धीरे धीरे अगर आपको ये समझ आया है, अगर ये नहीं समझ आया तो नहीं हो सकता। मान लो कि जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं, एक बार को मान लो कि क्या पता वो सच हो, मैं सच बोल रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन आपको हो सकता है समझ ना आए, मुझे समझ आ गई है इसलिए मेरे लिए वो सच है। वो क्या है? अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। बैलेंस का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमेशा हम खुश रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। नहीं जी, रो रहे हो तो खुल के रोना है, ठीक है? दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से होना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। गेम है जिसमें मैं एक प्लेयर हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूं उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसका एक्चुअल में मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है। ये बात अभी हमको समझ नहीं आती है। अगर ये बात हमको समझ आ जाए, जो मैं रोल की बात करता हूं, मैंने अपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाले में भी एग्जांपल दिया था, एक रोल का एग्जांपल दिया था कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो और आप एक्चुअल में कुछ और हो, तो आपको समझ आए कि मैं हूं कौन और जो मैं एक्चुअल में हूं उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है इस खेल में उसका कोई असर नहीं होता है। तो बाहर से देखने में लग रहा होगा कि आपके ऊपर असर हो रहा है, शायद आंसू भी आ रहे होंगे, शायद आप हंस भी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, सक्सेसफुल हो रहे होंगे, लेकिन अंदर से यू ऑलवेज बी अनटच्ड। अगर ये नहीं पकड़ में आया तो कोई सोल्यूशन नहीं है ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो। क्योंकि क्या होगा, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो लेकिन आपको यह नहीं पता कि यह गेम है, लाइफ एक गेम की जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े हो, तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो ज्यादातर गलत ही होंगे। क्यों गलत होंगे? जबकि आपकी सलाह सही होगी, आप अपने दोस्तों को सलाह दोगे वो सलाह सही होगी, लेकिन खुद को सलाह दोगे वो गलत होगी। क्यों? मैं बीच में आ गया ना। बस इसको ध्यान से समझ, ये बात पकड़ में आ रही है ना, कि जब हम सलाह देते हैं किसी और को तो बड़ी सही सलाह देते हैं, जब हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो हम बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आप को उस सिचुएशन से आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे गेम खेलते खेलते सपोज आप भूल ही गए तो क्या होगा, एकदम से वो बंदा मरा या उसको चोट लगी या उसका पैर टूटा, हड्डी टूटी, तो आप रोने लग जाओगे, चीखने चिल्लाने लग जाओगे। मतलब वो क्या रहा है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए उस गेम में, डिटैच होकर के उस गेम को नहीं देख पा रहे हैं। इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा, हम भूल ही गए हैं कि ये खेल है, ठीक है ना, खेल में हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, लाइफ को एक खेल की तरह देखो। मेरे लिए लाइफ कैसी है, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट डज लाइफ मीन टू मी, मेरे लिए जो बॉडी है ना और जो माइंड है माइंड मतलब समझते हो कि जो प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू ये बॉडी काम कर रही है, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, क्लियर है ना? जो हमारे थॉट्स है वो सॉफ्टवेयर के जैसे है, बॉडी हार्डवेयर के जैसी है, जैसा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है वैसी बॉडी एक्ट कर रही होती है। सॉफ्टवेयर निकाल दो बॉडी में से तो बॉडी कैसे एक्ट करेगी? क्लियर हो रहा है ना? तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। तो मिडिल लाइफ क्या है? मैं दोनों से अनटच्ड हूं, ना तो मैं हार्डवेयर हूं ना मैं सॉफ्टवेयर हूं, मैं इन दोनों को क्रिएट करने वाला हूं। बन गया ना खेल, पहचानना की जरूरत ही नहीं, आप हो, आप इस बोतल से अलग हो, इसमें पहचानने की क्या जरूरत है? आप बोतल को देख रहे हो, बोतल आपको नहीं देख रही है, क्या ये फैक्ट है या कोई इल्यूजन है? फैक्ट है भाई, आप अपनी इस बॉडी को देख सकते हो लेकिन ये बॉडी आपको नहीं देख सकती, ये फैक्ट है या इल्यूजन है? फैक्ट है, तो फैक्ट के बारे में क्या सोचना है? क्लियर हो गया? तो मैं जानने वाला हूं इस पूरे के पूरे खेल को। अब इससे क्या होगा? देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट, एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के। लाइफ आपके लिए खेल जैसी होगी, मतलब एक कमाल का खेल। अब खेल क्या है कि किस तरह से इस हार्डवेयर को, मतलब कि इस बॉडी को, और इस सॉफ्टवेयर को, मतलब कि माइंड को प्रोग्राम किया जाए, इस बॉडी को डिजाइन किया जाए, और इसके आसपास में जो रिलेशनशिप्स हैं, जो बिजनेस है, जो काम है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं इस सोसाइटी के लिए या अपने लिए या ये वो, सबको कैसे परफेक्टली किया जाए। तो परफेक्ट अभी हो नहीं सकता, लेकिन नहीं भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये खेल है। समझ पा रहे हो? तो धीरे धीरे, अगर और कुछ नहीं तो यार मेरी इतनी सी बात को समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, इतनी सी बात को समझो कि जिंदगी एक खेल है। अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या, ये बताओ मुझे। आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपका गया कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो। फिर 24 घंटे आप यही दिमाग लगाओगे कि अब कहां पर इस खेल में ना क्या कमी रह गई है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो? पहले दिन में क्या 10वें लेवल पे पहुंच जाते हो? ऐसा नो, नहीं पहुंचते हो, तो टाइम लगता है ना। लेकिन क्या आप पहले दिन में 10वें लेवल पे नहीं पहुंचे तो क्या खेल खेलना बंद कर देते हो? आप उसको परफेक्ट करते रहते हो, बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो। धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका लेवल बेटर होने लग जाता है। आप 5वें पे जाते हो, 10वें पे जाते हो, 20वें पे। अब जिंदगी के खेल पे वीडियो गेम में क्या फर्क है? वीडियो गेम में एक एंड आ जाता है, एक एंड आ जाता है कि ये 50वां लेवल है, इसके आगे और कुछ नहीं है। जिंदगी के कोई एंड ही नहीं है, देयर इज नो एंड, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट परफेक्शन इज जस्ट अ वर्ड व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। नहीं तो मैं करता क्या, समझ रहे हो? नहीं तो आप करोगे क्या? अगर परफेक्ट हो गए तो अब खेल में मजा ही नहीं रह गया। जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हम हैं इस दुनिया में, तो उस खेल को हम बेटर करते चले जा रहे हैं, और बेटर, बाहर नहीं अपने अंदर। और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको यह भी पता होगा मेरे को किस आदमी से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। मतलब अब आप अवेयर हो गए उस खेल में, अभी आप अवेयर नहीं हो, अभी आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको यह तक पता होगा कि इस खेल में अगर मैंने ये उल्टा बोला अपनी वाइफ को तो वहां से एक रिएक्शन आएगा जिसकी वजह से हमारी 4 दिन तक लड़ाई चलेगी। क्यों बोलना है, मत बोलो। क्यों ऐसी बातें बोलनी है जिसकी वजह से कलेश होने वाला है, या उन्होंने कुछ बोल दिया तो चुपचाप मुंह नीचे करके वहां से निकल जाओ, कितना मजा आएगा खेलने में। मतलब जब तक आपकी सांसें चल रही होंगी, बीमार हो गए, अभी क्या होगा, बीमार हो गए तो रोने लग जाओगे, या थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया तो क्या होगा, दुखी हो जाओगे। दुखी क्या होना है, खेल है, खेल का पार्ट है। बीमार हो गए उस बीमारी को देखो, समझ पा रहे हो? क्या मुश्किल है करना, बहुत आसान है अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो। अपनी उस बीमारी को डिटैच होकर के देखो कि मेरे हाथ में एक रिमोट है, यानी कि माइंड, और ये बॉडी है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, और ये बॉडी बीमार हो गई, अब मैं क्या करूं? अब उस रिमोट में क्या ऐसा कोई बटन है जिससे या तो बीमारी ठीक हो, या वो बीमारी दोबारा ना हो, या अगर बीमारी पता है कि हो गई है और इतने दिन लेगी ये ठीक होने में, और उसका उसकी कोई दवाई अभी बनी नहीं है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर जिसको वर्ल्ड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, तो मैं क्या करूं? चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं, खेल है। हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, 10 दिन में गायब, समझ गए? देन यू विल हैव पेशेंस ऑल्सो.

वजह से हम लाइफ में दुखी रहते हैं, हम नीचे धंसते चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमारी सारा जो सुख दुख है वो चीजों से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, बाहर जो चीजें उससे रिलेटेड है। सारा कंट्रोल दुनिया के हाथ में है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं। आ रहा है ना पकड़ में? चीजें आ गई चली गई, क्या फर्क पड़ता है, खेल है। समझ गए? आज ये बॉडी है, इस बॉडी के आसपास में और बॉडीज है, कल एक बॉडी उसमें से कम हो गई, क्या फर्क पड़ता है, खेल है। ये धीरे धीरे समझना है आपको इसको, ये बॉडी कम हो गई चाहे दूसरी बॉडी में, क्या फर्क पड़ता है, खेल है। बीमार हो गई फिर ठीक हो गई, समझ रहे कितना मतलब मजेदार है, इट्स फनी एक्चुअली। अगर आप इसको लाइट हार्टेड होकर के देख पाओ तो आपके लिए एक्चुअल में दूसरों की लाइफ तो फनी ही है, बस अपनी लाइफ ही सीरियस है। पड़ोसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आपके लिए फन है। अपनी लाइफ में जरा से भी कुछ हो जाए तो क्या हो गया मेरे साथ में, क्या मूर्ख वाली हरकतें कर। बी मैच्योर, बी वाइज, समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी। बिजनेस में लॉस लग गया, मान लो बहुत बड़ा लॉस लग गया, अब लग रहा है कि बेटा कल सड़क पे आने वाले, क्या हो गया, खेल है। अब देखते हैं अगली चाल क्या होगी, मुझे खुद भी नहीं पता कि अगली चाल क्या होने वाली। अरे मजा आ गया, खेल है। यही तो खेल का मजा है, मुझे नहीं पता अगले कदम पे क्या होने वाला, यही तो एडवेंचर है। देखो एक वीडियो गेम है जिसमें जो लेवल आप क्रॉस कर चुके हो उसी को बार बार क्रॉस करने में मजा आता है या अगले लेवल पे जाने में मजा आता है, ये बात लोगों को समझ नहीं आती है। रियल लाइफ में जैसे जिंदगी जी रहे थे आज से 10 साल पहले, आज भी वैसे ही जी रहे हैं, रिपीट मोड, ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, रिपीट कर रहे हैं, क्या मजा है, सेम लेवल पे। इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है सारे के सारे, उनके पास जाकर के बैठोगे खुद थके हुए हैं, आपको भी थका देंगे। लाइफ नहीं नजर आएगी, बॉटल जैसे है, समझ गए ना, बॉटल मुर्दा है ना, मुर्दा है ना, इसके अंदर जान नहीं है ना, लोगों के अंदर जान है क्या? अरे नहीं, बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान होगी, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिलेंगे। बच्चों के साथ खेलेंगे तो खुल के खेलेंगे, काम करेंगे तो खुल के करेंगे, जो कर रहे हो खुल के करेंगे, इश्क करेंगे तो खुल के करेंगे, कमाल के आशिक होंगे वो, समझ गए। इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके लिए ये खेल है। लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकती है, सोच सकते हैं, सोचते नहीं, लोगों को सोचने में डर लगता है, हो सकता है, बहुत आसान है, देख सकते हैं मेरी आंखों में, झूठ नहीं बोल, बहुत आसान है। अगर खेल समझ जाओ तो, खेल समझ आए तो, समझ गए ना, मेरा पति है, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, अब मुझे सारा कुछ याद आ रहा है, उसने पहले भी वो किया था, अब जिस बात पे हमारी लड़ाई हो रही है वो तो हम भूल ही गए हैं, हमारी बहस किसी और बात पे हो रही है, अब वो सारा कुछ आ गया, मैं क्या करूं, अब वो भी चीख रहा है मैं भी चीख रही हूं, समझ रहे हो ये क्या गेम चल रहा है यार, इसको आराम से समझो, इसको खेल की तरह देखो। लग गई तो क्या हो गया, लगी हुई है लाइफ में सबकी लगी हुई है, क्या हो गया, खेल है, खेल है जी, अभी लगी हुई है, कल बेटर हो जाएगी लाइफ, जरा तो कुछ अच्छा हो जाएगा, आज जो जॉब है वो अच्छी नहीं है तो आज बुरी हालत है, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है जी, पार्ट ऑफ लाइफ है, कल एक अच्छी जॉब लग जाएगी, हम एकदम से खुश होने लग जाएंगे, फिर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, गेम है। बी एडवेंचरस, बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ। अगर ऐसे आप बन सको, जो बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कहां है फियर ऑफ डेथ, बताओ, इफ यू नो दैट कि ये बॉडी जिसको हम डेथ बोलते हैं, इस बॉडी को बचाने का कोई तरीका नहीं है, मरनी ही मरनी है, जानी जानी चाहिए, ये बॉडी हो चाहे कोई भी बॉडी हो, जो अंदर का सॉफ्टवेयर है जो इससे कनेक्टेड है, वो जब ये बॉडी नहीं तो वो सॉफ्टवेयर कहां है, समझ गए, तो सॉफ्टवेयर भी गया, हार्डवेयर भी गया, बचा क्या, मैं बचा, ये मैं नहीं पता कि क्या बचता है क्या नहीं बचता है, और मैं हूं कौन, ये नहीं पता है, तो फियर ऑफ डेथ निकल जाता है। कोई और भी अगर गया तो क्या गया, बॉडी गई ना, कुछ है जो नहीं मरता है, और वो हमको समझ आ जाएगी।

वो जो कुछ है इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है और कुछ नहीं है, बाकी सब मरता है। सब मरता है जी, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मरता। कुछ ऐसा है जो पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में, जब से दुनिया थी, है और जब तक रहेगी, वो नहीं मरा। अगर हमको समझ आ जाए कि मैं वो ही हूं तो तब ये खेल कैसा होगा। समझ पा रहे हो? मतलब इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कैन नॉट डाई, एंड इवन इफ आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी, दिस कैन नॉट सर्वाइव, दिस हैज टू डाई, इज द पार्ट ऑफ द गेम।

0: आज मैं आपको बताता हूँ हेलमेट ना पहनने के दो फायदे।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
0: पहला फायदा, आपके ऊपर मूवी बनाई जाएगी, क्योंकि सार फूटने से आप गाज नहीं बांध सकते हैं।
2: बहुत तेज हो रहा है।
0: दूसरा फायदा, आपकी पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान हो जाएगी, क्योंकि हाई सिग्नल पर वो आपको रोक ही लेंगे।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? इस शानदार से ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आरजे अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी की हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस। हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इस शानदार सुरक्षा के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। जहाँ टाइम हो गया वेदर अपडेट का, अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें 43 डिग्री जाने वाला है। इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 30 डिग्री है। विंड स्पीड आपको 18 मिलने वाली है। ह्यूमिडिटी मिलेगी 20% और डे रहने वाला है सनी सनी, यानी कि अच्छी खासी धूप निकलने वाली है और गर्मी भी बहुत होने वाली है। तो इस गर्मी भरे मौसम में खुद का ख्याल रखना जरूरी है। अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखिए, साथ ही अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh, I hate making love songs.
1: सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
2: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
3: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। वीडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

कुछ बीमारियां ना ऐसी होती हैं जो ना दिखाई देती है, जिनके बारे में ना पता चलता है इनिशियल स्टेज पर। इसलिए कहा जाता है हर हेल्थ कंडीशन दिखाई नहीं देती, इसलिए अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ, और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड इन्फ्लेमेटरी बोल डिसीज डे। यानी कि जो लोगों को इन्फ्लेमेटरी बोल डिसीज यानी IBD के बारे में अवेयर करने के लिए डेडिकेट किया जाता है, आज हम वो दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर इस बीमारी की बात की जाए तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी एक क्रोनिक डिसीज है, जिसमें हमारी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ बीमारियां बाहर से नहीं दिखती। और अगर इस बीमारी के कॉमन सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे पहले स्टमक पेन, बहुत ज्यादा पेट दर्द, फ्रीक्वेंट डाइजेस्टिव इश्यूज होना, साथ ही फटीग फील करना और वेट लॉस होना बहुत ही तेजी से, ये कुछ ऐसे सिम्टम है जिनको देखकर पता लग सकता है कि आपको IBD की प्रॉब्लम है। अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो इन बीमारियों से सिर्फ और सिर्फ हमें अवेयरनेस ही बचा सकता है। अवेयरनेस यानी अर्ली डायग्नोसिस, जो हेल्प करता है आपको इस बीमारी से लड़ने के लिए। अवेयरनेस यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट से बेटर लाइफ पॉसिबल है, ये बताता है हमें। साथ ही इनविजिबल इलनेस को समझना भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें अवेयरनेस समझाता है। इसलिए कहा जाता है हेल्थ इश्यूज को इग्नोर नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करना सीखिए। और आज का दिन हमें यही बताता है कि जितनी हो सके उतनी अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, सो दैट की हेल्थ को लाइटली ना लिया जाए। और सब अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। इसके साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चल रही?
1: बाय।
2: लाइफ ऑन व्हील्स, जहाँ जिंदगी है वहाँ हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
3: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुँचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
2: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

क्या कभी आपने सोचा एक छोटा सा प्लांट फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है? रेडियो महारानी 89.9 मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहां आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेचर, ग्रीनरी और एनवायरमेंट केयर को प्रमोट करता है। और अब बात करें प्लांट की, तो पहले ये जानते हैं आखिर प्लांटिंग जरूरी क्यों है। सबसे पहले इससे हमें मिलती है फ्रेश एयर, एंड सेकेंड थिंग पॉल्यूशन कम करने में सबसे बड़ी हेल्प जो करता है वो है प्लांट। नेचर के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कौन कराता है? प्लांट्स। चाहे फिर बात हो गार्डन की, बालकनी की, या फिर क्यों ना हो रोड साइड वाले प्लांट्स, ये सभी प्लांट आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं। और लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो, लेकिन प्लांट सबसे ज्यादा ग्रो होने चाहिए, यही हम सबकी लाइफ का मोटिव होना चाहिए। और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आपको एक चैलेंज दिया जाए। सो चैलेंज ऑफ द डे ये है, एक प्लांट जरूर लगाइए आज के दिन। किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं प्लांट, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। साथ ही ग्रीन हैबिट्स अडॉप्ट कीजिए, जहां भी आपको लगता है ना कि एनवायरनमेंट को आपकी जरूरत है, वहां आप सबसे पहले जाकर खड़े होइए, क्योंकि नेचर को केयर करना फ्यूचर को केयर करने जैसा है। और हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन को क्या देंगे? एनवायरनमेंट। सो आज से अपना ये मोटिव बनाइए, ग्रीनरी को जितना हो सके उतना प्रमोट करेंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। और अगर आपको लगता है ना कि आपको ये छोटी सी हैबिट आपके एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा बेहतर बना सकती है, तो आज ही उस हैबिट को अडॉप्ट करेंगे। और साथ ही सुनते रहेंगे रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: राजा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: Wheels of Life, Wheels of Hope, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सचिन, ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई?
2: पापा, रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो, जैसी।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

सबकी फैमिली में ना एक डॉक्टर ऐसा जरूर मिलेगा जो सिर्फ इलनेस नहीं बल्कि पूरी की पूरी फैमिली को समझाता है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे, यानी कि एक दिन जो डेडिकेटेड है फैमिली डॉक्टर्स के केयर सपोर्ट और डेडिकेशन को सल्यूट करने के लिए। और बात अगर इस दिन की जाए ना तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फैमिली डॉक्टर्स क्यों स्पेशल होते हैं। ये हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ गाइडेंस होते हैं, साथ ही हर एज ग्रुप की केयर करते हैं, हमारे घर की इमरजेंसी हो या रूटीन चेकअप्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ये सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं देते बल्कि ट्रस्ट और कंफर्ट भी देते हैं, इसलिए भाई फैमिली डॉक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर हेल्दी फैमिली के पीछे एक केयरिंग फैमिली डॉक्टर का सपोर्ट होता ही है, तभी शायद से हम इतने हेल्दी फिट रह पाते हैं। और आज का दिन अकेली नहीं आया, आज का दिन अपने साथ एक रिमाइंडर लेकर आया, एंड रिमाइंडर ये है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स को इम्पोर्टेंट दीजिए, सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर ना करें, साथ ही प्रिवेंटिव केयर भी उतनी ही जरूरी है जितना की बाकी सारी चीजें। सो आज उन सभी डॉक्टर्स को थैंक यू जरूर बोलेगा जो जनरेशन की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और बने रहिए रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस शो पर।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जब ट्रैफिक हो टाइट और मौसम का मूड हो लाइट, वही मॉर्निंग एक्सप्रेस में मिलती है ट्रेंडिंग बाइट्स। सुनना ना भूले सुबह 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सत्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

अपने शार्प ह्यूमर, स्मार्ट ऑब्जर्वेशन और ग्लोबल कॉमेडी का इंडियन फेस लेकर जो घूम रहे हैं, आज हम हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले उन्हीं पर्सनालिटी का। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन श्री आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर आज एक कॉमेडियन, एक्टर, एक राइटर का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिनका नाम है वीर दास। और अगर वीर की बात करें ना, तो वीर ने स्टैंड अप कॉमेडी को इंडिया में एक फ्रेश और मॉडर्न स्टाइल दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीर ने अपनी विटी कॉमेडी, स्टेज प्रेजेंस और यूनिक स्टोरी टेलिंग की वजह से इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल ऑडियंस का भी दिल जीत लिया है। अब बहुत सारी चीजें जो इन्हें स्पेशल बनाती है, सबसे पहले तो इंटेलिजेंट ह्यूमर रखते हैं, जो चीज इनमें सबसे ज्यादा अलग है। कॉन्फिडेंट स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं, एक्टिंग और राइटिंग दोनों में टैलेंटेड है। सो भाई, रेडियो महारानी पर आज हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है एक सुपर टैलेंटेड एक्टर का। कॉमेडी के थ्रू सोशल ऑब्जर्वेशन को फनी वे में प्रेजेंट करना इनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ रही है। सो आज फैंस भी इन्हें दिल से विश कर रहे हैं और रेडियो महारानी भी इन्हें दिल से विश कर रही है। रेडियो महारानी विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे वीर दास। आप ऐसे हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, साथ ही अपने फैंस का दिल जीतते रहे और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM के झटके।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो, सुन के जाओ।
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: Yeah.
1: हम सबकी कॉमन आदत हो गई है हर किसी मोमेंट को कैप्चर करके रखने की, जिसके लिए हम फोटोज देते टाइम ना बहुत सारे पोज करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा एक सिंपल पोज भी डिजिटल रिस्क बन सकता है? नहीं सोचा ना। वेलकम बैक टू रेडियो हरियाणा, मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो आज साइबर स्कैम किस तरह से हो सकता है, एक और मंत्र डिकोड कर लिया है मैंने, तो बस वही बताने आई हूँ। सो एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं इन दिनों कि हाई रेजोल्यूशन फोटोज और एडवांस AI टूल्स की वजह से ऑनलाइन फोटो में दिखने वाले फिंगरप्रिंट मिसयूज हो सकते हैं। सो अब आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन फोटो में हमारे फिंगरप्रिंट्स कैसे दिख सकते हैं? सो भाई यही बताने के लिए आ गए। अगर आजकल अगर कैमरास की बात करूं तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, इतने ज्यादा क्लियर हो गए हैं कि आपके हैंड जेस्टर्स, जब हम फोटोज के टाइम पे वो पीस साइन बनाते हैं यानी कि विक्ट्री साइन, तो वहां पर आपका फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाता है। सो ऐसे में जो स्कैमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो AI टूल्स की हेल्प से जो भी आपके हैंड जेस्टर्स है ना वहां से प्रिंट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और फिर उससे आपका एक्चुअल हैंड प्रिंट यानी कि हैंड इम्प्रेशन वो डेवलप हो रहा है। अब बात करें कि इससे रिस्क क्या है। सबसे पहले तो आपकी आइडेंटिटी मिसयूज हो सकती है, सिक्योरिटी कंसर्न्स पे बहुत बड़ा सवाल है, साथ ही बायोमेट्रिक डेटा एक्सपोजर। सो भाई रिस्क तो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर करना क्या है, अब स्मार्ट वे में मैं लेकर आ गई हूँ। सबसे पहले तो एक्सट्रीमली क्लोजअप हैंड फोटोज अवॉइड करें हमेशा, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर हाई रेजोल्यूशन सेंसिटिव फोटोज लिमिटेड रखें और साथ ही प्राइवेसी सेटिंग का यूज करें, सो दैट कि आपका डेटा आप तक ही रहे, कोई और उसे एक्सेस ही ना कर पाए। और ऑनलाइन दुनिया में हर चीज शेयर करना स्मार्टनेस नहीं बल्कि डिजिटल अवेयरनेस ही रियल स्मार्टनेस है, ये बताता है। सो माय डियर लिसनर, सेल्फीज लो, मेमोरीज बनाओ पर साइबर सेफ्टी का ध्यान रखकर, और साथ ही सुनते रहो रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो। स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
3: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो मा।
1: वो खिड़की इंतजार की तरह इंतजार न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद तुम्हारा ही होगा
1: सबका। ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई बस आ गई।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं एक बहुत ही अच्छी चीज लेकर आ गई हूँ। और यार जब बात करते हैं ना डेली रूटीन की, तो कितना सारा काम करते हैं, लेकिन उस रूटीन में कभी आपने सोचा है कि ब्रेक लेना कितना ज्यादा जरूरी है? आई नो काम इम्पोर्टेंट है, पर रिचार्ज होना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आज मैं एक स्टडी लेकर आई हूँ, स्टडीज के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस नॉन स्टॉप वर्क स्ट्रेस एंजाइटी और बर्न आउट को इंक्रीज कर सकता है। तो भाई यहाँ पर ना एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेगुलर शॉर्ट वेकेशंस या ब्रेक लेना मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। सो माय डियर लिसनर्स, आज ही अपना एक ट्रिप छोटा सा प्लान कर लीजिए। अब बात करें इस नॉन स्टॉप वर्क के इफेक्ट की, तो भाई सबसे पहले स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाता है, कॉन्स्टेंट फटीग को इंक्रीज करता है, पुअर स्लीप और साथ ही इमोशनल एग्जॉशन, ये सारी चीजें होती है जब आप नॉन स्टॉप काम करते हो, स्पेशली हाई प्रेशर जॉब्स में ये प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा कॉमन हो जाती है भाई। सो वेकेशंस के फायदे तो है, हमारा माइंड फ्रेश करता है, क्रिएटिविटी और फोकस को इम्प्रूव करता है एंड साथ ही प्रोडक्टिविटी बेटर होती है और मूड भी हैप्पियर फील करता है। लेकिन आपको एक बात बताऊंगी चाहिए कि मशीन भी रेस्ट करती है, लेकिन हम तो इंसान है तो हमें तो डेफिनेटली रेस्ट लेना चाहिए। और वेकेशंस का मतलब हमेशा एक्सपेंसिव ट्रिप नहीं होती, कभी कभी बस थोड़ा सा ब्रेक ही इनफ होता है। सो वर्क हार्ड करिए पर रिचार्ज होना मत भूलिए, और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा, सुन।

Anjali. शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं, बहुत सारी अपडेट्स मैंने आज आपको दी हैं और मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। बेसिकली सुबह 7 बजे आई थी और 10 बजने वाले हैं, तो भाई कल फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन तब तक मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ऑन योर रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी। 89.6 FM कुछ हटके।

0: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके।
2: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
3: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
4: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक। हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों बात करते हैं हम इस वक्त टेम्परेचर यानी के एटमॉस्फेयर के बारे में, जहाँ फरीदाबाद शहर में इस वक्त 37 डिग्री सेल्सियस तापमान सुबह 10:08 पर हो रहा है। जाने की गर्मी बढ़ती जा रही है और अब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिन गर्मी का लॉकडाउन। जी हाँ, घर में रहने की एडवाइस जी देते नजर आए हैं मौसम विभाग के जितने भी पर्सन हैं, उनको यही कहना है कि 22 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट रहने वाला है। ये मैक्सिमम 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचते नजर आएगा। तो देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी है तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं बात करें क्योंकि एक भी बढ़ता नज़र आ रहा है, जहाँ एक भी मेंटेन करना है, जहाँ की अगर बात की जाए जहाँ पॉसिबिलिटीज है कारपूल करें, गार्बेज ना चलाएं, पार्क्स गार्डन सोसाइटीज में वाटर फॉगिंग करें, बाकी ऐसी भी चर्चाएं करता रहूँगा। उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ हम बात करते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है, तो डॉक्टर्स की सलाह कि इस गर्मी के मौसम में सबसे पहले तो दोपहर 12 से 4 बजे के बीच में धूप में बाहर ना जाएं। बच्चों, सीनियर सिटीजन और बीमार लोगों का ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, भले ही प्यास ना लगे बट एक दो घूंट पानी पीते रहे ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। ORS, नींबू पानी, लस्सी, छाछ जैसे कुछ चीज़ें ज़्यादा पिए, हल्के रंग और ढी

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेगर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों आप सुबह जानते हैं कि जहाँ पर पूरे देश से हमारे अगर बात करें रिक्वेस्ट की गई है जहाँ पे मन की बाद प्रसारण में तो नहीं लेकिन बाद में देश के नाम संदेश देते हुए ये रिक्वेस्ट की गई कि जहाँ भी पॉसिबिलिटीज हैं आप लोग डीजल पेट्रोल तेल कम यूज़ करें, जहाँ हम लोग कहीं ना कहीं हमारे जो क्राइसिस जो ऑयल को लेकर के हो सकते हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए, जिस बात को देकर के शहर के कई वासी ऐसे हैं जो एक ही डेस्टिनेशन पर अगर जा रहे हैं तो सेम व्हीकल से जा रहे हैं, पांच पांच पर्सन से एक व्हीकल पर जा रहे हैं कि पांच बंदे बैठने की कैपेसिटी है जिससे कि तेल बचाया जा सकता है, खुद के भी खर्चे कम हैं, ऑयल भी बचाया जा सकता है, तो प्लीज़ इसमें आप लोग भी सहयोग करें। जहाँ भी पॉसिबिलिटीज हैं मेट्रो से जा सकते हैं मेट्रो से जा सके, शेयरिंग राइड्स करें, शेयरिंग व्हीकल्स पे जाएं, कापूल करें, जिससे कि हम लोग बिल्कुल इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑयल में दिक्कत आ सकती है, क्वांटिटी में दिक्कत आ सकती है, इतनी अभी अवेलेबिलिटी नहीं, तो उसके लिए हम सबको मिलकर के एकजुटता के साथ सब काम करने होंगे। बाकी चर्चा करता रहूँगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल।
0: वाह वाह।
1: अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।
0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फिल्म। मैं फिल्म डॉमिक आरजे मौने के लेकर के आ गया हूँ बहुत ही चर्चा, बहुत सी बातें सिनेमा के गलियारे से, सिनेमा के पेटारे से। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा के गलियारों में रिलीज होने को है तैयार, कुछ सिल्वर स्क्रीन पर तो कुछ का होगा आगाज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। कहीं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चर्चा है जहां पर नई कहानियों की हो रही है अनाउंसमेंट, तो कहीं बताऊंगा आपको स्टार्स की एंट्री, तो कहीं डेब्यू होगा डायरेक्टोरियल डेब्यू, नए गांव की मस्ती, नए गानों की धूम और हॉलीवुड के सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर कहानियां। सारी चर्चाएं करने वाला सिनेमा के गलियारे में, लेकिन हाँ, चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुनना कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से, पास टेरेस साउथ फिल्म फौजी की शूटिंग अगर बात की जाए, हैदराबाद के पास एक यहाँ पे शूटिंग चल रही, जहाँ अगर बात की जाए हैदराबाद के बाहरी इलाकों में रामौली फिल्म सिटी में शूटिंग यहाँ पे चर्चा में चल रही है। जहाँ पे अगर बात करें फौजी कहानी के बारे में, यह फौजी कहानी एक बढ़िया कहानी होने वाली है जहाँ पे प्रभास का किरदार बहुत डिफरेंट होगा। फिलहाल इस वक्त फौजी की शूटिंग रुकी हुई कुछ इंसिडेंट होने की वजह से, जो कि एक तेलुगु एक्शन ड्रामा कहानी होने वाली। प्रभास एक रग्ड मासेस हीरो वाला रोल खेल रहे हैं और ये रोल कितना धमाकेदार होने वाला है इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। प्रभास का किरदार है और कुछ रग्ड किरदार होने वाला है, तो कुछ धमाकेदार ही होगा, इंतजार रहेगा। बाकी इस चर्चा करते रहो।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं ईशान खट्टर अपनी अगली फिल्म में पहली बार फुल कॉमेडी लीड रोल खेल सकते हैं। जी हाँ, बुलेट फिल्म डायरेक्टर पलाश वसमानी की डायरेक्शन बन रही इसका टाइटल जुगाड़ू है। टाइटल जुगाड़ू और फुल फ्लज कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ लीड कॉमिक हीरो के किरदार में होंगे ईशान खट्टर। बात करिए फैमिली ह्यूमर वाली वेब सीरीज जैसे गुल्लक के लिए जाने जाते हैं इस फिल्म

से उसी लाइट या मिरेकुल चोंग को थिएटर पर लाने की कोशिश कर रहा है। ईशान खट्टर के साथ साथ यहाँ पे तान्या होंगी जो कि पंजाबी एक्ट्रेस हैं, जो इस फिल्म से हिंदी फिल्म डेब्यू कर रही हैं और उनका ये प्रोजेक्ट भी बहुत चर्चा में। तान्या पंजाबी इंडस्ट्री की बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस में से एक है। देखते हैं उनकी ये डेब्यू कैसा रहने वाला है और जोड़ी का डेब्यू कैसा रहने वाला है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं आशुतोष गोविकर अपनी नई प्रोजेक्ट टेंपल रेडर्स लेकर ओटीटी डॉक्यू स्पेस में आ रहे हैं, जो एक 4-part डॉक्यू ड्रामा सीरीज है और इसका सब्जेक्ट कुछ ऐसी मूर्तियां जो कि इतिहास में भारत के ऐसे ऐतिहासिक जगहों से चुराई गई, वो अब कहां पर है कुछ इसी से जुड़ी कहानी लाई जा रही है। और 4 episode की डॉक्यूमेंट्री ड्रामा से सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग को मिक करती नजर आई। इंडिया के सेकंड टेंपल आर्टिफैक्ट्स की थेफ्ट और उनकी ग्लोबल ट्रैफिकिंग पर भारत के हजारों मंदिरों से चुराई गई वो आइडल्स की बड़ी स्केल टाक नेटवर्क को सबके सामने कैसे लाया जाएगा, ये चीज लेकर के आ रहे हैं आशुतोष गोविकर, जहां पे राघव खन्ना द एलिफेंट विस्पर्स द हंट फॉर वीरप्पन जैसी प्रीमियर डॉक्यू प्रोजेक्ट्स में काम किया, वो इस कहानी में भी आने वाले हैं। इंतजार रहेगा इसकी रिलीजिंग का, बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे भाई कुछ और खूबसूरत से गाने ओनली ऑन रेडियो महाराष्ट्र।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है,
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ तो बात कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिनेमा के बारे में, कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होने वाले हैं। पहली, रामचरण जानी कपूर स्टार फिल्म जो कि द्रविड़ियन स्पोर्ट्स ड्रामा कहानी 4 जून को सिनेमा घरों में आएगी। है जवानी का इश्क होना है, वरुण धवन जावेद धवन की रोमांचक कॉमेडी कहानी 5 जून पहले से क्लैश करने की हो चर्चाएं अब हैं, देखिए कौन सी कहानी धमाल मचाने वाली है। वहीं इसी कहानी में एक नाम और जुड़ता है इस कड़ी में, बंदर। अनुराग कश्यप डायरेक्शन क्राइम थ्रिलर बॉबी देओल सान्या मल्होत्रा सबा 5 जून को रिलीज ग्रिड पर है। इसके बाद 12 जून हॉन्टेड 3D गोस्ट ऑफ द पास्ट विक्रम भट 3D हॉरर फ्रेंचाइज सीक्वल। विमो चक्रवर्ती और चेतना पांडे इस कहानी में नजर आने वाले हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं गवर्नर द साइलेंस सेवियर मनोज वाजपेयी वाली फाइनेंशियल पॉलिटिकल ड्रामा कहानी। थिएटर रिलीज 12 जून को होने वाली है और इसी कड़ी में आपको बताऊं रन टाइम में वॉर 2 ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ स्टारक कहानी भी इसी साल रिलीज होने जा रही है। वहीं बागी 4 खोसला का खोसला 2 और मिर्जापुर द मूवी लोकप्रिय वेब सीरीज बड़े पर्दे पर फिल्म लेकर के आ रही है। तो ये सारी कहानियां इस साल की बड़ी कहानियों में से एक है, रहेगा इंतजार। बाकी ऐसी भी चर्चाएं करते रहूंगा, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले घर का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
7: आवारा हूँ, आवारा।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं सिनेमा के कैलेंडर की, जहाँ फिल्मी फ्लेवर में वक्त है सिनेमा के कैलेंडर का। और आज 19th में बर्थडे है एक ऐसे एक्टर का जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह किसी शॉर्टकट से नहीं बल्कि टैलेंट, पेशेंस और स्ट्रगल से बनाई। एक छोटे से शहर से निकला हुआ लड़का सपने लेकर मुंबई आता है, स्ट्रगल करता है और छोटे छोटे रोल्स करते करते एक दिन ऐसी सीढ़ियां चढ़ जाता है, एक दिन अपनी एक्टिंग से पूरी इंडस्ट्री को इम्प्रेस कर देता है। और ये कहानी एक ऐसे स्टार की है जिसके किरदारों को देख करके आप कहेंगे ये लिटरली अपने किरदार जी कर निभाता है। कौन है वो जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, बताऊंगा नाम और कुछ बेहतरीन किरदार और कुछ अनकहे किस्से उनकी जिंदगी से। सवाल सुनाऊंगा कुछ खूबसूरत से गाने ओनली ऑन रेडियो वहर राली।

फिल्मी ट्विस्ट से लेकर नए सॉन्ग की लिस्ट तक सुनते रहिए फिल्मी फ्लेवर रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

0: भेजा सरकार
1: ने। थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: के सफर में तू।
1: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हो साथ सिनेमा के कैलेंडर की, जहाँ पे आज बड़े सेलिब्रेट कर रहे इंडस्ट्री के बेहतरीन स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनका सफर बॉलीवुड की मोस्ट इंस्पायरिंग जर्नीज में से एक माना जाता है। एक्टिंग से पहले उन्होंने केमिस्ट शॉप पे जॉब की, वॉचमैन का काम किया और फिर थिएटर के थ्रू अपने सपने को शेप दिया। शुरुआत में उन्हें छोटे रोल्स मिले लेकिन हर छोटे सीन में भी उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा। टॉप फिल्म्स और आइकॉनिक कैरेक्टर्स की बात करें, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तलाश पर अपना इम्पैक्ट छोड़ा। टॉप फिल्म्स और आइकॉनिक कैरेक्टर्स की बात करें, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तलाश बॉक्स, माझी, द माउंटेन मैन और मंजो। लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर का फैजल कैरेक्टर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। उस कैरेक्टर का एटीट्यूड, स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी आज भी कल्ट स्टेटस रखता है। ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: यही है।
1: भाई क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो
0: सौ बातों की एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: इतना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: बोल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: है जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इसी खूबसूरत गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। जो दोस्तों सिनेमा के कैलेंडर में हम लोग बात कर रहे हैं आज के स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बात करूं यहाँ पे उनकी बेहतरीन कहानी के बारे में जहाँ उनके किरदार और उनकी कहानियों को आज तक याद रखा जाता गैंग्स ऑफ वासेपुर द लंच बॉक्स से लेकर मंटो तक। लेकिन बात की जाए उनके फेवरेट कैरेक्टर के बारे में जो उनका खुद का भी फेवरेट रहा और उनके फ्रेंड्स का भी, वो था गैंग्स ऑफ वासेपुर का फैजल का किरदार जहां उनके करियर का टर्निंग पॉइंट यहीं पर आया। उस कैरेक्टर से एटीट्यूड स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी आज भी कल्ट स्टेटस माना जाता है नवाजुद्दीन का। नवाजुद्दीन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सर्कल से जुड़े रहे और थिएटर ने उनकी एक्टिंग को मजबूत बनाया। जहां बात की जाए मुंबई तो पहुंचे रहे सिर्फ इसी बात को लेकर के कि एक्टिंग करनी है, लेकिन इसी दौरान उन्हें कहीं ना कहीं एक शू शॉप पर भी काम करना पड़ा, डिलीवरी बॉय भी बनना पड़ा। जाने कितने ही काम किए जाकर के फिर उनके हाथ लगे छोटे छोटे करेक्टर्स। छोटे करेक्टर्स को भी निभाने के लिए वो बिल्कुल तैयार रहे कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके बड़े करेक्टर्स कभी ना कभी कुछ ऐसा धमाल मचाएंगे कि उनका नाम होगा, और वो नाम हुआ गैंग्स ऑफ वासेपुर से। तो आज के सिनेमा के कैलेंडर में यही चर्चा यहाँ पे अब समाप्त होती है क्योंकि वक्त हो चला है मेरे यहाँ से जाने का। आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम जगह, तब तक सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके, और जाते जाते ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी के लिए।

0: खराब सड़कों से छुटकारा, सुरक्षित सफर हमारा।
1: दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी बिना किसी वजह से डांस कर रही है तो समझ जाइए, सड़क पर गड्ढे अपनी धुन पर नाच रहे हैं। कब तक ये झटके सहेंगे? अब आइए, आवाज उठाएं और बदलाव लाएं।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी कभी एक आवाज सिर्फ गाती नहीं, वो हवा की तरह दिल के कोने कोने में घुल जाती है। और जब वो आवाज पहाड़ों से आती हो तो उसमें एक अजीब सा सुकून होता है। आज हम बात कर रहे हैं उसी सुकून की। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं मोहित चौहान की। 1966, हिमाचल प्रदेश का नाहन, शांत शहर, पहाड़ी हवा और प्रकृति की खामोशी, इसी माहौल में पैदा हुए मोहित चौहान। बचपन से ही उनका रिश्ता नेचर से गहरा था। उनके पिता एक जियोलॉजिस्ट थे, इसलिए मोहित का

अलग अलग पहाड़ी इलाकों में गुजरा। स्कूल के दिनों में ही उन्हें म्यूजिक का शौक लग गया था, लेकिन ये शौक फिल्मी नहीं था। वो क्लासिकल या बॉलीवुड के गाने नहीं बल्कि फोक एंड सूफी म्यूजिक सुनते थे। उन्हें लगता था कि गाना सिर्फ सुर नहीं एक एहसास होता है। कॉलेज के दिनों में उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, शायद इसी वजह से उनकी लिरिक्स और मेलोडी की समझ अलग बनी। लेकिन तब तक उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया था कि उन्हें सिंगर ही बनना है। एक तरफ सेफ करियर ऑप्शंस थे, दूसरी तरफ एक अनजाना सपना। पर मोहित ने दिल की सुनी, उन्होंने दिल्ली की तरफ रुख किया और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। एक कहानी स्ट्रगल की, एक कहानी दोस्ती की और एक बैंड की जिसका नाम था सिल्क रूट। और इसी सिल्क रूट ने मोहित चौहान को एक पहचान दी। लेकिन सफर अभी सिर्फ शुरू ही हुआ था और कैसे सिल्क रूट और डूबा डूबा से होते हुए वो आगे गए करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे क्लास तो पीती जा। सुन।

हर सिंगर की लाइफ में एक गाना होता है जो उसकी पहचान बन जाता है। मोहित चौहान के लिए वो गाना था डूबा डूबा रहता हूँ। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड आई गेस ये गाना हम सभी ने सुना हुआ है। 1990s का दौर था, इंडी म्यूजिक इंडिया में नया नया पॉपुलर हो रहा था। मोहित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बैंड बनाया सिल्क रूट। 1998 में उनका एल्बम बूंदे रिलीज हुई और उस एल्बम का एक गाना डूबा डूबा यूथ एंथम बन गया। ये गाना लाउड नहीं था, इसमें डांस बीट्स नहीं थे, इसमें सिर्फ एक सिंपल सी मेलोडी थी और मोहित की खुली हुई हवा जैसी आवाज। हर कॉलेज फेस्ट में हर गिटार वाले लड़के के प्लेलिस्ट में ये गाना बजने लगा। मोहित की आवाज में एक रॉ ऑनेस्टी थी, वो परफेक्ट नहीं लगती थी और शायद इसीलिए परफेक्ट लगती थी। लेकिन जैसे अक्सर होता है, सक्सेस के बाद भी चैलेंजेस आए। सिल्क रूट का सफर ज्यादा लंबा नहीं चला, बैंड टूट गया। अब मोहित के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या उनकी पहचान सिर्फ डूबा डूबा तक ही रही थी? इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था, बॉलीवुड में एंट्री और भी ज्यादा मुश्किल थी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक दरवाजा खोला और उस दरवाजे के पीछे खड़े थे एआर रहमान। और कैसे उन्होंने जीता एआर रहमान का विश्वास, करेंगे इसके बारे में बात मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, आप सब सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तुमने क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

कभी कभी जिंदगी में एक इंसान का विश्वास सब कुछ बदल देता है, और मोहित चौहान की जिंदगी में वो इंसान थे एआर रहमान। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम बात कर रहे हैं मोहित चौहान की। 2000s की शुरुआत में मोहित चौहान को रहमान के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी रंग दे बसंती और फिर आया गाना खून चला। इस गाने ने मोहित की आवाज को एक नई गहराई दी। अब वो सिर्फ इंडी सिंगर नहीं थे, वो बॉलीवुड का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। साल 2009, फिल्म आई लव आजकल, गाना था तुमसे ही। इस गाने ने मोहित चौहान को हर दिल की आवाज बना दिया। हर ब्रेकअप, हर प्यार, हर तन्हा रात में ये गाना बजने लगा। उनकी आवाज में जो सॉफ्टनेस थी, वो सिंप्लिसिटी थी, उसने यूथ को कनेक्ट कर लिया। फिर आया मसक अली दिल्ली 6 से, और उसके बाद पीलू फ्रॉम द मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और फिर जो भी मैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही समझा, रॉकस्टार से जो भी मैं। जो गाना था उसमें मोहित ने सिर्फ गाना नहीं गाया, उन्होंने उस गाने को जिया था। उनकी आवाज में एक दर्द था, एक रेबल था और आजादी थी। वो सिंगर जो कभी नाहन के पहाड़ियों में खामोशी में गाता था, अब पूरे देश की आवाज बन चुका था। और कैसे वो रॉकस्टार से एक उन्होंने नई पहचान बनाई, करेंगे इसके बारे में बात। लेकिन इस गाने के

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

अगर मोहित चौहान की लाइफ एक मूवी होती तो उसका टर्निंग पॉइंट होता रॉकस्टार। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। साल 2011, रणबीर कपूर स्टारर रॉकस्टार, म्यूजिक बाय एआर रहमान और मोहित चौहान की आवाज जॉर्डन के कैरेक्टर की रूह बन गई। फिर से उड़ चला, याद है ये गाना, आजादी का एहसास। और उसके बाद गाना आया साड्डा हक एथे रक, यानी कि एक रेबल की चीख थी। और फिर गाना आया तुम हो, और उस गाने में प्यार की खामोशी। हर इमोशन को मोहित ने इतनी नेचुरल तरीके से गाया ना कि लोग भूल गए कि स्क्रीन पर एक्टर है। उन्हें लगा जैसे मोहित खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं। इस फिल्म के बाद उन्हें कई अवार्ड्स मिले, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड था लोगों का प्यार। मोहित कभी फ्लैशी सेलिब्रिटी नहीं बने, ना ही कॉन्ट्रोवर्सीज में रहे। वो वही सिंपल ग्राउंडेड इंसान रहे जो नेचर से प्यार करता है। उन्होंने अपने होम टाउन में म्यूजिक फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने शुरू किए ताकि नए टैलेंट को मौका मिले। उनकी फिलॉसफी सिंपल है, म्यूजिक शुड हील। और शायद इसी वजह से उनकी आवाज आज भी सुकून देती है। और कैसे वो आवाज जो कभी पुरानी नहीं होती वो लेजेंड बनी, करेंगे इसके बारे में बात। मगर इस गाने के बाद आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: राजा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

महसूस करवाने से मिलती है। नाहन के पहाड़ों से निकली वो आवाज आज भी हवा के साथ कहीं ना कहीं गूंज रही है, और शायद इसीलिए मोहित चौहान सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक एहसास है, और ये एहसास हम सभी के दिल में छप चुका है। तो कैसी लगी आपको इनकी इस लाइव स्टोरी, बताइएगा जरूर। नंबर है हमारा 9654896896। और अगली कहानी आप किसके बारे में सुनना चाहते हैं ये भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर मैं रिपीट कर देता हूं, 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना, और मैं लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आप सभी से फिर से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गाना है फ्रॉम द मूवी MS धोनी और इसी गाने के साथ स्वागत है शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड, जहाँ मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी कहानियों की जिन्होंने अपनी लाइफ की दिशा ही बदल दी। और सक्सेस कहते हैं एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी ऑफन साइलेंट होती है, लोनली होती है और कई बार इनविजिबल होती है। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, जहाँ मैं बात करती हूँ उन कहानियों की जो सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं बल्कि हिम्मत, पेशेंस और रिस्क के पन्नों में लिखी जाती है। आज की स्टोरी कोई स्टार्टअप फंडिंग वाली फेरी टेल नहीं है, ना ही कोई ओवरनाइट वायरल सक्सेस। ये कहानी है पेशेंस की, ऑब्जर्वेशन की और उस कॉन्फिडेंस की जो भीड़ में ऑपोजिट जाकर डिसीजन लेने की हिम्मत देता है। इमेजिन करो एक छोटा सा सिंगल रूम अपार्टमेंट जहाँ स्पेस कम था लेकिन सपने बहुत बड़े थे, जहाँ लग्जरी नहीं थी लेकिन सीख बहुत थी, और जहाँ किसी ने ये डिसाइड किया कि जिंदगी सरकमस्टांसेस से नहीं डिसीजन से बनती है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने कॉलेज की डिग्री पूरी नहीं की लेकिन मार्केट को ऐसे पढ़ा जैसे कोई किताब पढ़ता है, जिसने बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों नहीं सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत की और आज वही इंसान ग्लोबल रिच लिस्ट में जगह बना चुका है। बिलियंस की नेटवर्थ, हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स और एक ऐसा ब्रांड जो मिडिल क्लास की शॉपिंग हैबिट का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हर बड़ी सक्सेस स्टोरी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि शुरुआत बिजनेस से नहीं हुई थी, शुरुआत लॉस से हुई थी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी घाटे में था। उस मोमेंट पे दो रास्ते थे, एक सेफ जॉब या अनसर्टेनिटी भरा रिस्क, और इन्होंने चुना बिल्कुल सही रिस्क। लेकिन रिस्क भी ऐसा जो समझ से लिया गया था, ना कि एक्साइटमेंट से। इन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, लोगों की साइकोलॉजी को समझा और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस सीखी। आज के टाइम में हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन इस इंसान ने इयर्स तक क्वाइटली ग्राउंड वर्क किया। नो हाइप, नो मीडिया इंटरव्यूज, नो फ्लैशी लाइफस्टाइल, बस ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेटजी और साइलेंट एग्जीक्यूशन। इंटरेस्टिंग बात यह है, जब पूरा मार्केट एक डायरेक्शन में भाग रहा था, ये इंसान ऑपोजिट डायरेक्शन में सोच रहा था और यही डिसीजन इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। क्योंकि कभी कभी सक्सेस भीड़ के साथ चलने में नहीं बल्कि भीड़ को समझने में होती है। तो आज हम सक्सेस को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे कैसे लॉस अपॉर्चुनिटी बना, कैसे पेशेंस प्रॉफिट में बदला और कैसे एक सिंपल साइकोलॉजी ने रिटेल इंडस्ट्री की डेफिनेशन बदल दी। लेकिन स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद करता है। मीडिया से दूरी, सिंपल वाइट क्लॉथ्स और लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सिंपल। लोग उन्हें एक निकनेम से भी जानते हैं जो उनकी पर्सनालिटी को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। लेकिन वो निकनेम क्या है और आखिर वो इंसान है कौन, ये मैं बताऊंगी लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

गाना है फ्रॉम द मूवी अग्निपथ और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है बिजनेस अनप्लग्ड और आज मैं बात करने वाली हूँ एक साइलेंट बिलियनियर के बारे में जो स्पॉटलाइट से दूर रहकर भी करोड़ों लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। नाम है राधा किशन दमानी। जी हाँ, वही विजनरी माइंड जिन्होंने बनाया डीमार्ट। आज दुनिया इन्हें रिटेल किंग के नाम से जानती है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक इनकी नेटवर्थ लाख करोड़ तक पहुँच चुकी है, लेकिन जर्नी शुरू हुई थी सिर्फ 5,000 रुपए से। स्टॉक मार्केट से शुरुआत, फादर के गुजरने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फिर एक ऐसा डिसीजन जिसने इन्हें मार्केट में एक अलग पहचान दी। जब पूरा मार्केट तेजी पर भरोसा कर रहा था तब इन्होंने गिरावट पर दाव लगाया और यही स्ट्रेटेजी खासकर हर्षद मेहता दौर में इनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। लेकिन दमानी सिर्फ इन्वेस्टर नहीं थे, वो ऑब्जर्वर थे। इन्होंने समझा भारत की असली ताकत लग्जरी नहीं बल्कि वैल्यू शॉपिंग है और इसी ऑब्जर्वेशन ने जन्म दिया एक ऐसे रिटेल मॉडल को जो प्रॉफिट से पहले ट्रस्ट बनाता है। लेकिन सवाल अब ये है, सिंगल रूम से रिटेल एम्पायर तक का ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ, इनका बचपन कैसा था, फैमिली बैकग्राउंड क्या था और कॉलेज ड्रॉप होने के बाद इन्होंने खुद को कैसे रीबिल्ड किया, ये सब बताऊंगी। लेकिन लगान फिल्म का गाना आ रहा है, गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं आपके साथ गीत हूँ। हर बड़ी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत किसी ऑफिस केबिन से नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे से होती है बॉस। राधा किशन दमानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। साल 1954, राजस्थान के बीकानेर में एक मारवाड़ी परिवार में जन्म और बाद में परिवार का शिफ्ट होना सपनों के शहर मुंबई में। लेकिन मुंबई की चमक हर किसी को लग्जरी नहीं देती। फैमिली सिंगल रूम अपार्टमेंट में रहती थी जहां स्पेस कम था लेकिन सीख बहुत थी। इनके फादर शेयर ब्रोकर थे और बचपन से ही नंबर्स, रिस्क और मार्केट की बातें इनको सुनने मिलती थी। शायद वहीं से ऑब्जर्वेशन की आदत डेवलप हो गई। इन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की मुंबई यूनिवर्सिटी से, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज छोड़ दिया। ये डिसीजन फेलियर नहीं था, ये क्लैरिटी थी, क्योंकि कई बार डिग्री से ज्यादा डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होती है। लाइफ स्मूथली चल रही थी, लेकिन 1985 से 1986 में इनके फादर की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वो गुजर जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अनसर्टेनिटी और इमोशनल प्रेशर सब एक साथ आ गया था। फैमिली का बॉल बियरिंग बिजनेस पहले से ही स्ट्रगल कर रहा था और उस टाइम इन्होंने एक टफ डिसीजन लिया, बिजनेस को बंद करने का। सोचिए, एक यंग लड़का फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और सामने कोई क्लियर रोड मैप नहीं। लेकिन यहीं से इनकी रियल लर्निंग शुरू हुई। इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर स्टॉक मार्केट को सीरियसली समझना शुरू कर दिया। कोई फैंसी सेटअप नहीं, कोई बिग कैपिटल नहीं, बस 5,000 रुपए और सीखने की भूख। वो मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने नहीं, मार्केट को समझने आए थे। उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व किया, फियर और ग्रीड को समझा और पेशेंस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लिया। 1990 का दशक इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे ड्रामेटिक फेज, जहां एक्साइटमेंट भी थी और अनसर्टेनिटी भी। और इसी फेज में दमानी ने वो किया जो बिगनर्स रेयरली करते हैं। इन्होंने भीड़ को फॉलो नहीं किया बल्कि भीड़ को पढ़ा, और यहीं से उनकी आइडेंटिटी एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में बनने लगी। लेकिन इन्वेस्टर से एंटरप्रेन्योर बनने तक का डायरेक्शन कैसा था, वो अचानक नहीं था। उसके पीछे था ईयर्स का ऑब्जर्वेशन और एक सिंपल रियलाइजेशन। भारत का कंज्यूमर लग्जरी नहीं, वैल्यू चाहता है। और इसी रियलाइजेशन ने फ्यूचर में एक रिटेल रेवोल्यूशन की नींव रखी। लेकिन वो रियलाइजेशन बिजनेस में कैसे बदला, पहला स्टोर खोलने का डिसीजन कैसे आया और एक इन्वेस्टर अचानक रिटेलर क्यों बना, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से, वो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: इनके सामने मत नाचना।
1: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।
0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे नाचना है।

हाउसहोल्ड नेम बनता गया, लेकिन हर ग्रोथ फेज के साथ प्रेशर भी आता है, एक्सपेंशन का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। अब सवाल ये था, क्या ये स्लो एंड स्टेडी स्ट्रेटजी फास्ट ग्रोइंग रिटेल मार्केट में टिक पाएगी? क्या साइलेंट ग्रोथ एक दिन एक्सप्लोसिव सक्सेस में बदलेगी या कॉम्पिटिशन इसे पीछे छोड़ देगा? इसका जवाब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: एक क्लियर मैसेज दे दिया, साइलेंट एग्जीक्यूशन भी ब्लॉकबस्टर हो सकता है। नेटवर्थ के मामले में राधा किशन दमानी ग्लोबल रिच लिस्ट में नाम बना चुके थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात उनकी सिंप्लिसिटी वही रही, वाइट क्लॉथ्स, लो प्रॉफिट लाइफ, मीडिया से दूर, शायद इसीलिए इन्हें मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट भी कहा जाता है। लेकिन इस एम्पायर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लग्जरी नहीं डिसिप्लिन है, कम मार्जिन, फास्ट पेमेंट साइकिल, ओन स्टोर्स, कंट्रोल एक्सपेंशन, और यही स्ट्रेटेजी इन्हें कंपटीशन से अलग बनाती है, क्योंकि हर सक्सेस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा नंबर नहीं बल्कि लेसन होता है। राधा किशन दमानी की कहानी हमें बताती है, आपको फ्लैशी होने की जरूरत नहीं, आपको फास्टेस्ट होने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आपको पेशेंट और ऑब्जर्वेंट जरूर होना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा कैपिटल पैसा नहीं, क्लैरिटी होती है। उन्होंने मार्केट को समझा, कंज्यूमर को समझा, और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को समझा। अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हो तो शायद ये मैसेज आपके लिए है, स्टार्ट स्मॉल बट थिंक लॉन्ग टर्म, फॉलो ट्रेंड्स नहीं अंडरस्टैंडिंग फॉलो करो, और ग्रोथ के पीछे भागने से पहले ट्रस्ट को बिल्ड करो। फेलियर्स आएंगे, कंफ्यूजन होगा, कंपैरिजन भी होगा, लेकिन याद रखना हर सक्सेसफुल ब्रांड कभी अननोन ही था, और शायद आज आप भी उसी अननोन फेज में हो जहां पेशेंस सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो टेक योर टाइम, ऑब्जर्व मोर, पैनिक लेस, और कंसिस्टेंसी को बोरिंग समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बोरिंग कंसिस्टेंसी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट बनाती है। इसी के साथ ये था आज का एपिसोड बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत, और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जहाँ सक्सेस सिर्फ दिखाई नहीं देगी बल्कि समझ भी आएगी। टिल देन, ड्रीम बिग, स्टे ग्राउंडेड एंड कीप बिल्डिंग एंड कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
1: ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो है मनुदास का पे आवाज फिर भी मैं जोड़ के हाथ जो भी है पास है उस पे नाज बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी ऐसा हुआ है कोई खुशबू आपको अचानक सालों पुरानी यादों में ले जाए, जैसे दादी का संदूक या किसी पुरानी महफिल की हल्की सी महक, और उस

आज भी परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो कहा है कि फूल मुरझा जाते हैं वक्त के साथ, पर अत्र की खुशबू वक्त से भी आगे निकल जाती है। और इसी के साथ जानेंगे वापस आकर अत्र से जुड़ी कहानी। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर मैं हूँ आज अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर गरबा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं उस कहानी की जो हर घर को महका देती है, अत्र। अगर अत्र की बात करें तो अत्र को इत्र भी कहा जाता है। अत्र का असली गोल्डन एरा आया मुगल पीरियड में। तो आइए चलिए जानते हैं मुगल दरबार और अत्र का क्या कनेक्शन है। बात करें अगर इतिहास की तो अत्र का असली गोल्डन एरा आया मुगल पीरियड में। अगर हिस्ट्री की माने तो नूरजहां को अत्र से बहुत लगाव था। कहते हैं कि जब एक दिन गुलाब के फूल पानी में उबाले जा रहे थे तो पानी के ऊपर खुशबू वाला ऑयल लेयर जमा और वहीं से बना गुलाब का अत्र। तब से मुगल महफिलों में अत्र सिर्फ परफ्यूम नहीं, रॉयल्टी की पहचान बन गया। जब बात कर रहे हैं अत्र की तो आइए चलिए

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाए। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

89.6 FM पर मैं हूँ आर्जेन जी आपके साथ और आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं इत्र की, यानी कि अत्र। अब अत्र का प्रोसेस तो जान लिया बनेगा, तो चलिए आइए जानते हैं मिट्टी वाला अत्र कैसे महकता है। मिट्टी के अत्र की बात करें तो जब बरसात की पहली बूंद जमीन पर गिरती है तो जो खुशबू आती है ना, उसे कहते हैं पेट्रिकॉर, और कन्नौज के क्राफ्ट्समैन उसी खुशबू को अत्र में कैप्चर कर लेते हैं। सोचकर जरूर देखिए बारिश की महक एक बॉटल में, और वो कहा है कि बारिश की पहली बूंद जब मिट्टी को छू जाती है, उसी पल की खुशबू अत्र बनकर दुनिया में फैल जाती है। अब बात कर रहे हैं अत्र की, तो आइए चलिए जानते हैं इसका सफर। कभी जो अत्र सिर्फ इंडिया और मिडल ईस्ट तक सीमित था, आज वो यूरोप और अमेरिका तक पहुंच चुका है। बात करें लग्जरी परफ्यूम्स ब्रांड भी आज नेचुरल अत्र ऑयल्स को यूज कर रहे हैं, यानी एक पुरानी इंडियन ट्रेडिशन अब ग्लोबल ट्रेंड बन चुकी है। अत्र से बहुत कुछ जुड़ा है, अत्र के साथ जुड़ा है कल्चर और रिचुअल्स। इंडिया में अत्र का यूज सिर्फ परफ्यूम्स के लिए नहीं होता, कई जगह रिलीजियस रिचुअल्स, महफिल और फेस्टिवल्स में भी अत्र लगाया जाता है। बात करें टेंपल में भी अत्र की खुशबू महफिल को और सुकून भरा बना देती है। अत्र की सफर की बात तो की है, वापस आकर जानेंगे मॉडर्न परफ्यूम्स वर्सेस अत्र। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

कल्चर कारवा सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आरजी अंजी और आज हम बात कर रहे हैं अत्र की। अब बात कर रहे हैं अत्र की तो आइए चलिए जानते हैं मॉडर्न परफ्यूम्स वर्सेस अत्र की लड़ाई। आज के परफ्यूम्स में अल्कोहल और केमिकल्स होते हैं, लेकिन अगर बात करें अत्र की तो 100% नेचुरल ऑयल से बनता है, तभी तो इसकी फ्रेग्रेंस डीप और लॉन्ग लास्टिंग होती है और शायद इसीलिए अत्र की एक बूंद भी काफी होती है। अत्र की बात करें और खुशबू की बात ना हो, खुशबू जो याद बन जाती है, सच कहें तो अत्र से फ्रेग्रेंस नहीं है, वो यादों की महफिल है। एक खुशबू जो कभी दादी के संदूक से आती थी, कभी शादी की महफिल से। वो कहा है कि खुशबू का क्या है, हवा के साथ चल पड़ती है, पर अत्र की एक बूंद सदियों तक दिल में बस जाती है। और इसी के साथ आज हमने बात की कल्चर कारवा में अत्र की। जाना अत्र की खुशबू का राज, जाना इससे बनने का प्रोसेस और जाना इसका सफर। और आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा, जहां हम ढूंढ कर लाते हैं भारत की छोटी चीजों में छुपी बड़ी कहानियां। फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई खुशबू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजी अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं इस भरी दोपहरी वाली गर्मी में। मतलब देखो शाम हो गई है बट अभी भी कहां फील हो रहा है कि शाम हुई है। गर्मी तो वैसी की वैसी है जैसे कि दोपहर के 2 बज रहे हो या फिर 3 बज रहे हो, और अभी भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि शाम हो गई है। और यहीं पर अगर सर्दियों के दिन होते तो ऐसा लगता है कि अंधेरा होने वाला है। स्वागत है सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड बस मैं यूं गया और यूं आया, बस बताने आया था कि मैं आ गया हूं। आप लोग इस गाने को एंजॉय कीजिए, बस मैं आया और फिर बात करेंगे खूब सारी।

स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड एक बात तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि ये गर्मी ने कर दिया है बुरा हाल रे। अखियों से गोली मारे, अखियों से नहीं आसमान से गोले बरस रहे हैं इस टाइम। देखा जाए तो इतनी ही गर्मी हो रही है और झेली नहीं जा रही है। एंड यहाँ पर एक वीडियो आया है जहाँ पर एक फ्लाइट के अंदर ना लाइट था ना एसी था और परेशान कौन था, एक आम आदमी। कहाँ का था ये फ्लाइट, कहाँ की है ये फ्लाइट, सबके बारे में करेंगे बात। और इसी के साथ साथ सैलरी बढ़ाने के नाम पर क्या मिलता है। देखो बॉस तो तसल्ली दे देते हैं कि हाँ बढ़ जाएगी, डोंट वरी, मगर वरी तो करने की बात है ना, क्योंकि सैलरी इतनी आसानी से बढ़ती कहाँ है। और सैलरी बढ़ाने की जब बात आई है तो उसके नाम पर बिस्किट पकड़ा दिए गए हैं, बॉटल पकड़ा दी गई है पानी की, और टॉफीज पकड़ा दी गई है। कहाँ पर बताऊँगा। और सोचो ज़रा, गर्मी का मौसम है, आम का मौसम है, और आम के मौसम में हम लोगों को मैंगो शेक कितना पसंद होता है, और कितना महंगा आम आपने आज तक खरीदा है। 100, 120, 150, 200, 300, 400 इतने ही खरीदा होगा, तो शायद नहीं खरीदा होगा। बट क्या हुआ अगर मैं आपको बोलूँ 3 लाख रुपए किलो के आम भी मिलते हैं और एक आदमी ने सिर्फ और सिर्फ अपने घर की छत पर उन्हें उगा दिया। करेंगे इसके बारे में बात। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाने चला रहा हूँ। दिल्ली से लेके फरीदाबाद तक, टेक्नोलॉजी से लेके सारी अपडेट्स तक आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो नंबर है जी मेरा 9654896896, इन केस अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी बात करनी है। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर एक मिक्स मैशअप गाना सुनिए। इस गाने को 89.6 पर मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

जोगी रिमिक्स ये गाना, और इस गाने ने बहुत कुछ सिखाया. कैसे सिखाया? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं गर्मी के लिए रेडी नहीं हूँ, बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ इस गर्मी के लिए. स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर. मैं हूँ कौन, द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ. 5:17 ऑलमोस्ट हो चुके हैं मेरी स्टूडियो क्लॉक में, और अभी बाहर का मौसम कुछ ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि दिन के 4 बज रहे हो. वैसे एक घंटे का फर्क लग रहा है, बट स्टिल मौसम विभाग का कहना है ऐसी गर्मी अभी देखने को मिलने वाली है. आज का और कल का लू का अलर्ट भी जारी किया गया है, बेसिकली येलो अलर्ट है. तो इस येलो अलर्ट में आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है. आप लोगों को जितना हो सके उतना अवॉइड करो बाहर जाना, और अगर बाहर जा भी रहे हो तो सर को ढककर जाना है आप लोगों को. एंड इसके साथ साथ बता दूं आपको राहत कब मिलेगी. देखो मौसम विभाग का कहना है कि 5-10% चांस तो है कि बादल आ जाएंगे, बारिश हो जाएगी, मगर वो अभी नहीं है. वो अभी कम से कम एक हफ्ता लगेगा, और वो भी बस एक चांस है कि आज जा सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है. बट उसके बाद यानी कि इस हफ्ते की जो नेक्स्ट हफ्ता है ना, और उसमें जो थर्सडे और फ्राइडे की डेट्स है ना, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, वो कुछ ज़्यादा ही गर्मी वाली होने वाली है. 45 डिग्री पार पहुंच सकता है टेम्परेचर. वैसे घबराने की बात नहीं है, साल 2022 में 47 पहुंचा था, साल 2024 में 46 पहुंचा था, इस साल 45 पहुंच जाएगा. तो एक दो दिन तो झेल ही लेंगे हम लोग, है कि नहीं. तो आप लोग भी झेलिए, हम भी झेल ही रहे हैं अभी इस गर्मी को. बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना हाइड्रेटेड रहें ताकि आप लोगों की तबीयत ठीक रहे. और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 FM सुनते रहिए आप सभी के लिए. और गाना थोड़ा सा रिमिक्स वर्जन है गफूर का, ओनली ऑन 89.6 FM. मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ.

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

0: राजा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन,
2: ना, ना।

क्या आपको मालूम है इस टाइम पेट्रोल का सबसे ज्यादा प्राइस कहां पर है ऑल ओवर इंडिया। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। तिरुवनंतपुरम नाम की एक जगह है और है हैदराबाद। हैदराबाद में सबसे ज्यादा महंगा है इस टाइम पेट्रोल और वो है 111.88 यानी कि 111.88 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है, वो भी एक लीटर। और हमारे यहाँ पर अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 100 रुपये हो चुका है। न्यू दिल्ली में 98.64 और हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जहाँ पर पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो 0.91 रुपीज़ पर लीटर बढ़ा दिए गए हैं और डीजल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। तो बस इतना बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना अब कम इस्तेमाल करना है आप लोगों को गाड़ियाँ। और आप सभी को बता भी चार दिन पहले कह सकते हैं 15 मई के आसपास 3 रुपये पर लीटर प्राइसेस बढ़े थे और अब गाड़ियों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि आपकी जेब पर भी असर ज़्यादा ना पड़े। और इसी के साथ साथ जितना हो सके उतना कारपूलिंग कीजिए। और मेरी एक गुजारिश है सभी उन नौजवानों से जो शाम को गेड़ी मारने निकल पड़ते हैं, तो कुछ दिन गेड़ी नहीं मारोगे तो चल जाएगा। हम सभी को मालूम है कि इस टाइम मिडिल ईस्ट में क्या माहौल हो रखा है, तो उसकी वजह से बाकी देशों में जो प्राइस के हाल हैं, जो पेट्रोल के प्राइसेस अप गए हैं, इन्फ्लेशन रेट अप जा रहा है, उसके हिसाब से अभी इंडिया में ठीक ठाक माहौल है। बट देखो आने वाला समय कुछ भी हो सकता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपनाइए, साथ ही साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे कि गाड़ी बेवजह लेके मत जाइए, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो बेस्ट है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, देखो घर के आसपास पैदल जाओ। और इसके साथ साथ अगर आपको डेली ट्रैवल करना है या फिर फरीदाबाद से कहीं और जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक गाना किंग की आवाज में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तुमने क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

गर्मी का माहौल कुछ ऐसा है कि हर जगह खली वली बची पड़ी है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड एक वीडियो मेरे पास आया, मैंने सोचा क्यों ना फरीदाबाद की पब्लिक को इसके बारे में बता दिया जाए। तो इंडिगो फ्लाइट की ये वीडियो है पूरी की पूरी, और उसमें बत्ती हो गई गुल और बिना एसी और बिना रोशनी के सारे यात्री कॉमन मैन फंसे रह गए थे 30 मिनट तक। और ये बता दूं आपको एक्चुअली में क्या हुआ था, तकनीकी खराबी हो गई थी जिसके बाद ग्राउंड पावर यूनिट बंद हो गई, जिससे जो एयरक्राफ्ट होता है ना उसकी लाइट और एसी करीब 30 मिनट तक गायब रही। वडोदरा से दिल्ली आने वाली ये फ्लाइट थी और गर्मी के कारण लोग परेशान रहे। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वडोदरा में था तो इसलिए एक बार को ये लोग ठीक ठाक, मतलब ठीक है अपने आप को हवा कर रहे थे, गर्मी थी नो डाउट। बट अगर दिल्ली होता और ये कल की वीडियो है, और अगर दिल्ली में ऐसा कुछ हो जाता, सोचिए कितनी गर्मी पड़ रही है अभी दिल्ली एनसीआर में। तो खैर बता दूं आपको ये बहुत ज़्यादा परेशान रहे। फिर उसके बाद अखबार और फाइलों से अपने आप को हवा कर रहे थे, और इसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो स्पष्टीकरण भी आया है सामने, बता दिया गया है कि हाँ तकनीकी खराबी थी इस वजह से ये दिक्कतें आई है। बट मैं यही कहना चाहूँगा, देखो अभी गर्मियों में ये चीज़ एक्सेप्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों की इस पर क्या राय है, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी राय। नंबर है जी 9654896896। और वापस अगर बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो अपने आपको अभी से बूढ़ा समझने लग गए हैं, 40 के भी नहीं हुए फिर भी बूढ़ा समझ रहे हो, डोंट वरी, आप लोग जवान कहलाओगे। क्यों कहलाओगे, कैसे कहलाओगे, सब कुछ बताऊंगा मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: हाँ वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

इंसान की एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही बुरी आदत होती है, वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानता, मतलब बुरा नहीं मानता, बूढ़ा की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 40 से ऊपर इंसान बोलता है कि यार अभी मैं जवान हूँ, 30 से ऊपर इंसान बोलता है अभी मैं जवान हूँ, खैर 30 से ऊपर वाला तो जवान होता ही है ना। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और जवान और ये बूढ़े का ना एक परिभाषा होती है जो कि हर किसी की अलग होती है। अगर मैं अपने पेरेंट्स के सामने जाऊं, चाहे मैं 40-50 का भी क्यों ना हो जाऊं, मैं उनके लिए बच्चा ही रहूंगा, और उसके साथ साथ अगर मैं 40-50 का हो जाऊं और पब्लिक के बीच में जाऊं तो वो सब मुझे बूढ़ा ही समझेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप 40 से नीचे हैं तो आप जवान कहलाओगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रशिया कह रहा है, और रशिया में ये चीज़ बोल दी गई है कि अगर आपकी एज 39 या फिर उससे कम है तो फिर आप लोग जवान ही कहलाओगे। और मैं ही तो इस बात को मानता हूँ यार, हम 40 से ऊपर वाले को भी जवान मानते हैं तो 40 से नीचे वाले को भी तो युवा ही मानेंगे ना। और ये उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने बोला है, और मंत्रालय ने अपने इस फैसले की वजह बताई है कि जितनी भी हमारी लाइफ है ना वो अब बढ़ गई, लाइफ डिपेंडेंसी एक्सपेक्टेंसी सब कुछ, लाइफ की एज सब कुछ बढ़ गई है, और उम्र बढ़ने की जो गति होती है वो भी थोड़ी सी धीमी हो गई है, ऐसा उनका कहना है। बट मेरे हिसाब से सिर्फ मार्च का महीना धीमा गया था, उसके बाद कोई भी महीना धीमा नहीं गया है। तो चलिए आप लोग बताइए कि वॉट एज इज एग्जैक्टली कॉल्ड लाइक वो फिर जवान नहीं कहलाएंगे, बस इतना क्या हिंदी में बोल देता हूँ। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी एज है जिसमें इंसान को जवान कहलाना बंद कर देना चाहिए? नंबर है जी 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए एक गाना नगाड़ी सिंह ढोल, सुनिए इस गाने को 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम बेमिसाल तुम लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

अक्सर इंसान दिल लगा लेता है कहाँ पर, अपने ऑफिस में, नहीं नहीं लोगों से नहीं, ऑफिस से दिल लगा लेता है और फिर बोलता है मेरी सैलरी मेरे लिए सब कुछ है, मगर वहां पर दिल लगाना मना था। स्वागत है इसी गाने के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड जो मैं ये बात बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अप्रेजल का टाइम है। अप्रेजल के टाइम पे क्या होता है, हम लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस रहती है, उम्मीदें रहती है कि बॉस ने हमारा काम देखा होगा, हमें वर्क प्रेशर में काम करते हुए देखा होगा और शायद इस बार सबसे ज़्यादा अप्रेजल मेरा ही हो जाएगा, सबकी उम्मीद यही होती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। और मैं बता दूं आपको, एक पूरे का पूरी कहानी सामने आ रही है और एक इंसान ने अपना पूरा का पूरा दर्द बयां किया है। वो कह रहा है कि अप्रेजल के नाम पे, उसने एक फोटो अपलोड किया, कह रहा है बस अप्रेजल के नाम पे मुझे ये मिला है। एक्चुअली मुझे एक बैग दिया गया जिसको गुडी बैग बोला गया और उस गुडी बैग में अंदर से निकली एक पानी की 10 रुपए वाली प्लास्टिक की बॉटल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली में ये इंसान मजाक कर रहा हो सकता है। इसने जो स्टोरी शेयर की है मैं बस आपके साथ वो चीज शेयर कर रहा हूँ। तो इसने पूरा का पूरा पोस्ट लिखा है, पोस्ट से पहले इसने फोटो शेयर करी है, पोस्ट में लिखा है कि देखो हमें गुडी बैग मिला था, उसके अंदर से ये निकला है एक पूरा का पूरा बिस्किट का पैकेट जो कि क्रैक जाए या फिर मारी लाइट हो सकता है, और एक पेन दिया है, एक टॉफी दी है, पल्स कैंडी आती है ना 1 रुपए की, हाँ बस वो शायद दे रखी है, और इसके साथ साथ एक ना गोल सा कुछ बटन टाइप का कुछ दे रखा है, वो तो समझ नहीं आ रहा क्या है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है वो घंटी है, वो जो अपनी साइकिल के आगे नहीं लगाते थे हम लोग बचपन में, वो वाली घंटी लग रही है। खैर अब ये जैसे ही वीडियो और ये पोस्ट वायरल हुआ है, पोस्ट माफ कीजिए वीडियो नहीं है ये फोटो है, जैसे ये वायरल हुआ लोग शुरू हो गए हैं, लोग बॉस को गलियां रहे हैं, क्यों क्यों भाई। देखो बॉस को बोलने से कुछ होगा नहीं क्योंकि बॉस भी खुद वहां कर्मचारी है। तो देखो मुझे लगता है जो भी सीईओ होते हैं उन लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए कि बच्चों के अप्रेजल बढ़ने चाहिए, बच्चे एज इन जो उनके कर्मचारी है उनके अप्रेजल होना चाहिए, अच्छा खासा अप्रेजल होना चाहिए जो उन्होंने काम किया उसके बेसिस पर। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते रहिए, आप सभी के लिए गाना 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

के अंदर फैशन आइकॉन स्वैग ऑन फ्लीक, बॉलीवुड वालों को स्वैग सिखा दू, ब्रांड जो पहनू उसकी सेल बढ़ा दू, मेरे बारे तुझे दुनिया बताएगी, खेलना तू चाहती है तो खेल खिला दू।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: जगह सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेमियोर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू शोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, और वो सवाल सिंपल सा है, और वो सवाल ये है कि आपने आज तक कितने महंगे आम खाए हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। कर्नाटक में एक आदमी ने अपने घर की छत पर ऐसे आम उगा दिए जो 3 लाख रुपए किलो बिकते हैं, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसे वाले आम हमारे गांव में भी किसी ने लगाने की कोशिश की थी, बट वो शायद सफल नहीं हो पाए, या फिर सफल हो गए और मुझे नहीं पता। बट द थिंग इज, इतने महंगे आम भी आते हैं जो कि लाखों में बिकते हैं। अब ये आम की क्वालिटी क्या है? ये जापानीज आम है, मियाज़ाकी आम कहते हैं इसको, और इसकी कीमत 3 लाख रुपए तक होती है, मतलब मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक होती है। सस्ते तो और भी बिकते हैं, मतलब क्या पता कुछ 1000 रुपए किलो भी बेच दें ये लोग। और कहते हैं कि इस आम को बनाने के लिए 9 तरह के मिनरल्स वाली खास मिट्टी लगती है, और इसकी शुरुआत में धूप और पानी की ज़रूरत पर ध्यान दिया जाता है बहुत ज़्यादा, और एक पौधे को मतलब खाद देते रहते, मतलब बहुत अच्छे से इसकी केयर करते, जैसे एक छोटे बच्चे की केयर करते हैं ना, सेम टू सेम उसी तरह से इस आम की केयर की जाती है। तो देखो, आम की इतनी केयर है जितनी हमारी केयर नहीं होती है, है कि नहीं? चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। अब आम की बात आ ही गई है तो आप लोग बता दीजिए इस सीजन के कितने मैंगो शेक पी चुके हो आप लोग? मैं सिर्फ 2 पिया हूँ अभी तक, तो 2 ही पिए हैं, बाद में और भी पी लूंगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। मेरे ऑफिस के बाहर से कोई मुझे झांक रहा है, चलो मैं बाहर देख कर आता हूँ। आप लोग इस गाने को एंजॉय कीजिए, रेडियो महारानी 89.6।

0: जिला सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

एक टाइम तो हर इंसान की लाइफ में जरूर आया होगा जब उसके घर वालों ने उसको बोला होगा कि शर्मा जी के लड़के को देख या फिर उनके लड़के को देख, उनकी लड़की को देख, कितना अच्छा पढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। सबसे फेमस लाइन होती है ये, सबके पेरेंट्स ऐसा करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं। तो आज मैं ऐसी बात करने वाला हूँ। देखो, आप लोगों की अगर कम मार्क्स आए होंगे तो आपको खूब दोष दिया गया होगा, पढ़ने में कमजोर है, ये है वो है। मगर आज मैं बता रहा हूँ पांच ऐसी आदतें हैं जो कि पेरेंटिंग कोच ने बताया है कि पांच ऐसी आदतें जो पेरेंट्स करते हैं, पेरेंट्स की होती है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ने में कमजोर रह जाते हैं। अब सुनिए, ये आदतें बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो पहली आदत है सिंपल, सिर्फ और सिर्फ नंबरों पर ध्यान देना। काफी सारे पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स चाहिए, हमें नंबर से मतलब है, तुम पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेकर आओ, बस नथिंग एल्स। ऐसा करने से बच्चा टेंस्ड हो जाता है, भले ही वो 100 में से 95 भी ले आए तब भी वो खुश नहीं रहता। और साथ ही साथ अगर बात करें पेरेंट्स की एक अच्छी आदत की, वो अच्छी आदत यही होती है, हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं। अच्छी एज इन सरकास्टिक वे में कह रहा हूँ मैं कि पेरेंट्स को किसी भी बच्चे को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देता है और बच्चा कभी भी बेहतर नहीं बन पाएगा। तीसरा, घर का रूटीन अगर सही ना हो ना तो फिर बच्चा पढ़ नहीं सकता, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है बच्चे का स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, तो जब

शुरू कर देते हैं। तो आपको यही नहीं करना है, ना करें जनाब ना करें। आपको करना क्या है, देखो बच्चे को बेहतर बनाने के लिए आप उसकी कोशिशों की तारीफ करो और सिर्फ रिजल्ट पर मतलब फोकस मत करो। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा कंपैरिजन ऑफ कर दो आज से ही। और इसके साथ साथ घर में एक डिसिप्लिन रूटीन बना दो अगर बच्चा डिसिप्लिन नहीं है तो। और बच्चा आपकी नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा, किसी और की नहीं मानेगा, डोंट वरी बच्चा आपका ही है। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। और जो भी मैंने बातें अभी बोली है ये कोई मैंने मन से बना के नहीं बोली है, ये सारी की सारी एक पेरेंटिंग कोच ने बताई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फरीदाबाद की पब्लिक को ये बता दिया जाए। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना आप सभी के लिए एपी ढिल्लों की आवाज़ में।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अभी रिसेंटली मेरे साथ एक बहुत ही अमेजिंग किस्सा हुआ है और वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप ही लोग तो हो जो मुझे डेली सुनते हो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। हो सकता है आप लोग इस टाइम जाम में फंसे हो सकता है आप लोग घर पहुंचने वाले हो, तो मैं आप सभी के साथ जो शेयर करने वाला हूं वो सबके हित में है। और वो ऐसा है कि हुआ यूं, मेरे पास एक आता है कॉल और वो कॉल मैंने सोचा अननोन नंबर है इसलिए मैंने कट कर दिया। फिर उसके बाद आता है व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल सेम नंबर से, तो मैंने फिर से कट कर दिया। एंड इसके बाद हुआ ये कि बैक टू बैक कम से कम 10 कॉल्स आए वीडियो कॉल, वो भी मैंने कट कर दिया। फिर एट द एंड मैंने एक वीडियो कॉल उठाया तो सामने देखा एक पुलिस ऑफिसर बैठे हैं और बोल रहे हैं फोन मत काटना, फोन काटने की हिम्मत मत करना। अब सोचिए मैंने क्या जवाब दिया होगा। मैं थोड़ा सा खुराफाती हूँ एंड मेरी सच में हंसी छूट गई वहां से। एंड मैं इतना हंसा कि वो भी सामने जो बैठा था पुलिस ऑफिसर की वर्दी में वो भी हंसना शुरू हो गया, कहता भाई तू पहला इंसान है जो हमें देखकर हंसा है। तो बेसिकली दे वर ट्राइंग टू अरेस्ट मी डिजिटली, जो कि इंडिया में कहीं पर भी इसका कोई प्रावधान नहीं है। उसने मुझे बहुत कोशिश की बोलने की, वो मेरे को बार बार ये धमका रहा था कि हम तुझे घर से उठा लेंगे, क्यों हंस रहा है। बहुत देर तक उन्होंने कोशिश की मगर मेरे को हर बात पर हंसी आती रही। तो जैसे ही मैं जब हंसना बंद नहीं हुआ मेरा, तो उस इंसान की भी हंसी शुरू हो गई एंड उसको पता लग गया कि ये इंसान फंसने नहीं वाला। तो बेसिकली मैं आप सभी को ये शेयर करना चाहता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट के लिए आपको कभी भी कॉल आएगा तो ऐसे ही आएगा, बैक टू बैक वीडियो कॉल्स आएंगी और आप लोगों को इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। और अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के पास हो सकता है एक नोटिस आएगा जो कि CBI की तरफ से आ सकता है, किसी की तरफ से आ सकता है, और आपको बोला जाएगा कि आप डिजिटली अरेस्टेड हैं या फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आप लोगों को कैसे वेरीफाई करना है कि नोटिस सही है या नहीं है बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि एक अभय नाम का चैटबॉट जारी किया गया है CBI द्वारा, कैसे यूज कर सकते हो बताऊंगा सब कुछ मगर इस गाने के बाद।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

गाना बड़ा अमेजिंग है, जट पैदा होया बस छोड़ वास्ते, बॉर्न टू शाइन। स्वागत है इसी गाने के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो लोगों को डिजिटल अरेस्ट से बचाने के लिए सीबीआई ने शुरू किया है एक नया चैट बॉट और उसका नाम है अभय। तो देखो जो ये चैटबॉट है ये लॉन्च किया गया है सबकी सेफ्टी के लिए, ताकि आपको रियल टाइम में नोटिस जांचने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। मतलब आप देख सकते हो कि आपके पास जो नोटिस आया है वो रियल है भी या फिर नहीं। मगर नोटिस आने के बाद सबसे पहली चीज़ तो आपको ये अपने आप से पूछना है कि क्या मैंने कोई गलत काम किया है। क्या नहीं किया तो फिर डरना क्यों है? जैसे कि काफ़ी बार होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। घबराए नहीं, सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको करना है कि सीबीआई की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर अभय का एक लोगो दिखेगा आपको और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लोगो है। अभय इज एआई बेस्ड हेल्प बॉट, ठीक है? अब इतना समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप जैसे ही इस अभय के लोगो पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालकर उससे ओटीपी वेरिफिकेशन करके नोटिस को अपलोड करना पड़ेगा, और फिर ये एआई चैट बॉट बता देगा आपको कि ये नोटिस असली है भी या फिर नहीं, और इससे आपको डिजिटल अरेस्ट कोई भी नहीं कर सकता। और डिजिटल अरेस्ट नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में, मतलब इंडिया में तो एग्जिस्ट नहीं करती अभी तक। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कभी भी आपके पास ऐसा कॉल आता है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वो बोलेंगे आपको, धमकाएंगे आपको, मतलब वो जो स्कैमर्स हैं वो आपको पूरी कोशिश करेंगे दबाने की, बट आपको दबना नहीं है। और अभी फ़िलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, वापस आकर और भी ढेरों बातें करेंगे, क्योंकि फरीदाबाद से रिलेटेड बातें जब होती है इधर। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि फरीदाबाद में अगर आपको किसी भी चीज़ से कोई भी परेशानी हो रही है तो आप लोग शेयर ज़रूर कर सकते हैं हमारे साथ। नंबर है जी 9654896896। फिलहाल रेडियो महारानी सुनते रहिए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, बातें होती रहेंगी। नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना सिद्धू मूसेवाला की आवाज में, ओनली ऑन 89.6 FM, कुछ हटके।

0: आओ दलदानी माड़ा
1: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर। डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

काफी बार ना पुराने गानों का मैशअप अमेजिंग ही होता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अभी मैं बात करना चाहता हूं दिल्ली सरकार के एक इनिशिएटिव की। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, और सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए है। मैं तो चाहता हूं कि फरीदाबाद में भी ये लॉन्च हो ऐसा कुछ, तो इससे इंटरेस्टिंग बात कुछ और हो ही नहीं सकती। एक्चुअली मैं उन्होंने लॉन्च किया है एक नंबर ताकि आप लोग अगर किसी को भी इल्लीगली कोई भी पेड़ काटता हुआ देखते हैं तो आप लोग उस नंबर पे कॉल करके एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, और कंप्लेंट ऐसी होगी कि आपकी तुरंत कार्रवाई की जाएगी और आपके पास हेल्प तुरंत भेजी जाएगी। जितनी देर में कोई इंसान पेड़ को काटेगा उतनी देर में तो वहां पर पुलिस आके उस इंसान को गिरफ्तार कर लेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी ऑनलाइन बहुत ज्यादा सराहना करी जा रही है, क्योंकि वी ऑल नो के दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम लोगों को पेड़ और भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे, एफॉरेस्टेशन फिर से करना पड़ेगा, यानी कि छोटे छोटे मिनी मिनी इको वन हमें बनाने पड़ेंगे। और जहां इको वन की बात आ ही गई है तो मैं आपको बता दूं सीधा फाउंडेशन के द्वारा, और उसी के साथ साथ और भी लोग हैं जो इसमें भागीदार हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। समर्थ को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। सीधा फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने बनाए हैं टोटल 13 इको वन जो कि फरीदाबाद के अंदर है, और बहुत छोटे छोटे इको वन, एक छोटा सा पार्क मान लीजिए, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पेड़ उगाए गए हैं और ये 13 हो गए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा बढ़ेंगे, और जैसे जैसे ये इको वन बनते जाते हैं यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद वहां पर छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं वो और भी ज्यादा आने लगते हैं। एंड वहां पर एक छोटा सा पौंड भी बनाया गया है जहाँ पौंड के अंदर आप लोगों को छोटी छोटी मछलियां भी देखने को मिल जाएगी बहुत ईजिली। तो चलिए मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा सभी से, जितने भी फरीदाबाद की पब्लिक मुझे सुन रही है, कि आप लोगों को अब वक्त आ चुका है कि एक नहीं कम से कम 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे, और उस 10 पेड़ों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी पूरे के पूरे एक नहीं दो साल तक, ताकि जैसे ही पेड़ अपने पैरों पर खड़ा हो जाए फिर उसके बाद वो आपको हरियाली भी देगा, ठंडी हवा भी देगा और स्वच्छ हवा भी देगा। बस इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए एक और पुराने गाने का मैशअप बोहेमिया की आवाज में साथ में योयो हनी सिंह, और सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 9.6।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे? सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

तू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

क्या आपको भी लगता है कि गर्मियों में पावर कट बढ़ जाती है? लगता है क्या है? वो तो है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड वन आप सभी के साथ। पावर कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से पावर कट भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि इंडिया में हम लोग रह रहे हैं और यहाँ पर कुछ शरारती तत्व होते हैं और कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं जो कि फ्री में बिजली लेते हैं। कैसे? कुंडा डाल देते हैं। हाँ, कुंडा पता है ना आप लोगों को, एक तार में ऐसे आगे से हुक बनाएंगे और जो रोड के साइड से तार जा रही होगी उसके ऊपर से हुक डाल देंगे। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तो ऐसा अगर आपके आसपास होता है उनकी कंप्लेंट ज़रूर कीजिएगा, भले ही वो आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो, क्योंकि गलत तो देखो गलत है और इससे इम्पैक्ट पड़ेगा हम सभी टैक्स पेयर्स पर। तो चलिए, यही बोलना चाहता था कि देखो पावर बचाइए, कंजर्व कीजिए और जितना हो सके उतना पेड़ लगाइए। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बोल रहा था, तो आगे आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से आने वाले कुछ सालों के बाद अगर हम लोग आज से ही पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं तो आने वाले 5 से 10 सालों में हम लोगों को गर्मी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी और वर्षा थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। वर्षा मीन्स बारिश, गलत ना सोचिएगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, मेरा हो गया यहाँ से जाने का टाइम। मिलूंगा आप सभी से फिर से कल शाम 5 से 8, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। अभी फिलहाल दिलजीत दोसांझ की आवाज में आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, वापस आएगी गीत विद इश्क बाजियां, खूब सारी प्यार भरी बातें लेकर आती है वो, तो सुनिएगा रेडियो महारानी पर इश्क बाजियां। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, सायोनारा, सी यू, टाटा, बाय बाय। गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM विद दिस सॉन्ग। Mixing in the house.

0: राजा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

किताबों के पन्नों में कैद रहते हैं। कुछ लफ्ज मोहब्बत की स्याही में डूब कर लिखे जाते हैं और कुछ कहानियां बस दिल से दिल तक पहुंचने के लिए जन्म लेती हैं। और अभी वही सफर शुरू हो गया है जहां फासले मिटते हैं और मोहब्बत की आवाज आपके कानों से होते हुए आपके दिल में उतरती है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। और ये खास सा जो सफर है, ये जो खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना, जहां हम सिर्फ शेरो शायरी नहीं सुनते बल्कि हम उन अल्फाजों में छुपी मोहब्बत को महसूस करते हैं, उस दर्द को समझते हैं जिनका इलाज सिर्फ एक आह नहीं है, और उन हंसी को भी संजोते हैं जो किसी खास के नाम शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है। तो आज फिर इस महफिल में मैं आपको ले चलूंगी उन शायरों की गलियों में जहां हर मोड़ पर एक एहसास खड़ा है, हर चौराहे पर एक मोहब्बत आपका इंतजार कर रही है और हर धड़कन एक शेर बनकर आपकी रूह को छूने के लिए तैयार है। तो आज एक ऐसे ही शायर के बारे में बातें होंगी जिन्होंने इश्क को जिया था। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर वन, जियो टैग मत लगाओ क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स

इन सब ने उनकी कलम को एक ऐसा रंग दे दिया जो मोहब्बत के साथ साथ इंतकाम, समाज और इंसानियत के रंग भी समेटे हुए था। ये बहुत ही खास से शायर हैं और इनकी जो शायरी है, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये जिंदगी में भी तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती ही है। और साहिर का नाम अगर मैंने लिया है तो अमृता का नाम ना, ऐसा नहीं होगा। साहिर का इश्क अमृता प्रीतम के साथ अधूरा रह गया और ये सब जानते हैं, लेकिन इस अधूरेपन ने उनकी शायरी को अमर कर दिया। मतलब यार ये शायरों की ना खास बात होती थी कि वो अपनी मोहब्बत बेशक अधूरी छोड़ दें, लेकिन पन्ने जरूर भर दिया करते थे उसी मोहब्बत के नाम जो अधूरी रह गई। ऐसे इनके कुछ किस्से हैं जो बहुत ही खास हैं, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं इन्होंने जो लिखा है उस पर कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो ये परेशानी है भाई, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी मत होना, ये पहली शर्त प्यार की होती है, ये तो आप सबको मालूम है। लेकिन कितनी सीधी सी बात है ना, लेकिन दिल को आर पार चीर देने वाली बात है। साहिर की खासियत ही यही थी कि वो मोहब्बत को सिर्फ दिल और फूल में नहीं बांधते थे, बल्कि उसके पीछे का दर्द, समाज की बेरुखी और इंसान की मजबूरियां भी दिखाते थे। तो ऐसे ही कुछ बातें और ऐसे ही इनके कुछ किस्से मैं आपको बताती रहूंगी, लेकिन फिलहाल गाना सुनते हैं। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई, सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी

एआर चित्रा की आवाज में है ये बहुत ही प्यारा सा गाना और एआर रहमान साहब ने इसको कंपोज किया है। लिरिसिस्ट है महबूब और फिल्म है बॉम्बे। और कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो लगता है कि आज के टाइम में बड़ा ही मुश्किल है यार ऐसे गानों को बनाना, जो उनमें फीलिंग्स होती हैं, जो उनमें वो कनेक्टिविटी होती है कि जो सीधा हमारे दिल तक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद को इमेजिन करने लगते हैं उस गाने में। ऐसे गाने बड़े मुश्किल हैं आज के टाइम में बनने। खैर, इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और खासा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिल लुधियानवी साहब के बारे में बातें चल रही हैं। बहुत ही सीधी सी बात बोलते हैं लेकिन दिल को आर पार कर देती है ये बातें। और उनकी एक ना खास सी नज्म है जिसका नाम है ताजमहल। वो अगर आपने सुनी हो तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई है उसमें। जहां उन्होंने शाहजहां के इश्क को सलाम करने की बजाय उनके इश्क की हकीकत पर सवाल उठाए हैं कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगों से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे बज्मे शाही में गरीबों का गुजर क्या है। चलिए इस बात को आपको बहुत ही सरल सी भाषा में समझाती हूँ। साहिर जहाँ अपनी महबूबा से कहते हैं, ताजमहल तुम्हारे लिए मोहब्बत का एक निशान सही, तुम्हें इस खूबसूरत वादी से मोहब्बत ही सही, लेकिन मेरी महबूबा मुझसे कहीं और मिला करो, क्योंकि ये शाही महफिले गरीबों के लिए नहीं बनी है। जहाँ वो बादशाहत की ताकत के निशान है वहाँ मोहब्बत की मासूम रूहों का जाना अच्छा नहीं होता। तुम्हें इस ताजमहल के पीछे छुपी हकीकत देखनी चाहिए। मतलब यहाँ उन्होंने ताजमहल को जो कनेक्ट किया है अपने इश्क से वो बहुत खूबसूरत सी बात है, जिस बात पर कोई कभी सवाल ही नहीं उठा पाया। खैर, अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत। और बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिर लुधियानवी के बारे में बातें चल रही हैं। साहिर की शायरी सिर्फ इश्क की तारीफ नहीं चाहती, वो मोहब्बत में ईमानदारी चाहते हैं, खामोशी में गहराई चाहते हैं। और वो कहते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये महज एक लाइन है, लेकिन इस लाइन में मोहब्बत, तन्हाई और एक पूरे रिश्ते की कहानी लिखी गई है। आज के दौर में जब इश्क को दिखावे में जीने का चलन है, वहां साहिर हमें याद दिलाते हैं कि मोहब्बत का असली रंग खामोशी में है, वो जो सिर्फ दिल से महसूस की जाती है और शायद कभी पूरी नहीं होती। खैर, मैं इस बात को नहीं कहूंगी कि मोहब्बत वही असल है जो पूरी ना हो। अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, आपका सिंपल पासवर्ड स्कैमर्स की इनकम स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो अब से अपने पासवर्ड बनाओ जैसे पकवान, ताकि स्कैमर्स ना पहुंचा सके आपको।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके
3: आप सुन रहे हैं आरजे गीत को इश्क भाजिया में, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन है, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास से सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोरदा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई, दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे उनको कैसे प्यार हुआ, इसके बारे में बात होगी। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है। लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: चले।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहां जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
2: इरशाद।
1: ब्रॉडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मिनी बस आ गई।
1: सुनो सुनो

पल पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्क बाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्क बाजियां शो है और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दियां गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर ओटीपी, यूपीआई, पिन कोड और सीवीवी शेयर ना करें। एटीएम बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
4: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
5: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बन जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं। और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन्हीं रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं, आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, क्या कम हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुन।

आहिस्ता है और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़े, क्योंकि एक ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है। शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार को निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: हर है
1: जाली गुड।

0: जरा मुस्कुराई जरा मुस्कुराई
1: कभी ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: Wheels of Life, Wheels of Hope, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा है। रेडियो महारानी कुछ हटके, कुछ हटके। रेडियो महारानी
3: कुछ हटके। मस्त बहारों का मैं

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकड़ सिरा कूड़े घुमुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकड़ सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: है जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कीजिएगा सरकार।
1: सानू खान की मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: कहा तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो कहाँ चली।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कदर करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
4: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
4: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
5: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
6: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
3: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा
0: समझे या और समझाऊं, ये तारीफ

0: save life. Of course, but save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदारा है, ओ करम खुदारा है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है.

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

नई जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: सेहत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।
1: कुछ हटके हैं।

0: I hate water wasting रे। जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है 3 यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: What, Chunka?
1: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: my god, special offer, get XYZ brand clothes worth rupees 5999 and just rupees 599. Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सत्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार नहीं रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: टेलीफोन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ, इकरार हुआ है प्यार से फिर।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो, वहां नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है, आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सके, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा ना छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो होना। इस सृष्टि में एकमात्र नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है, जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, तो एक घड़ी 24 मिनट या दो घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो। 24 घंटे में एक घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है, इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो। 24 घंटे में बिल्कुल छूट है, 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, न बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो, बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए, हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे, तो आधी घड़ी 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रेलु कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं, लाई के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा न रिश्तेदार है, न यहां तुम्हारा कोई मित्र है, न यहां तुम्हारा कोई शत्रु है, तुम केवल कमाने आए हो इस मृत्यु लोक में भगवान नाम रूपी धन। पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनोरंजन में फंसा दिया, काम क्रोध की क्रीड़ाएं हमारा नाश करती हैं, हम जान नहीं पाते। ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं। निष्काम होकर के, क्षमावान बन करके नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का